नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल

0: नई दिल्ली में संपन्न हुई सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, बीते हुए कल की चिंता आज की रोशनी को धुंधला कर देती है। सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और शुद्ध विचार हैं, इसलिए हर सुबह को एक नए मौके के रूप में देखे। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज आप सुनिएगा इस पाठ का भाग 201। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सुनील दत्त पर। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। पर सुनिए सदा बहार नगमे और 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान में डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई। यादों की परछाइयां का 3रा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशन है दीना नाथ का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। 6:35 होने वाले हैं, आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना

0: था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिवजी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में है। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूंगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल ने जो कृतियां बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएं, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणिप्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलाश से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए शीस गंग, स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृति।

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

0: राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था फिल्म राम राज्य से। आवाज थी सरस्वती राणी की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
1: दत्त मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर जमुनक तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई राम तत थई राम तत थई

शहर लोडनिया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन देश देश सगन नदादा किट झट झट झट सगन झट सग सगन का सगन का किट झट झट सग सगन का जी सगन नदा ताधा किट सग सगन का ताधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या थे या थे साथ या थे या थे

हातिम ताई फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ों में ये गाना राजा मेहंदी अली खान का की बोल थे और एस एन त्रिपाठी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लता मंगेशकर की आवाज में नास्तिक फिल्म से ये गाना, सी रामचंद्र का संगीत। बोल हैं प्रदीप के।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थे जवान।

0: आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे फंटूज फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं झोला, आप भोला, अरे तू क्या है?
2: मैं

0: Poila, Poca, Poila!
1: Mec, Poila, Agro, Poila!

रंगीन रातें फिल्म से आप अभी सुन रहे थे शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाज में ये गाना, केदार शर्मा के बोल, रोशन का संगीत। इसी के साथ आज काबूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आप सबका स्वागत है हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आग फिल्म के इस गाने के साथ, महेंद्र कपूर और आशा भोसले के आवाज में, असद भोपाली के बोल और संगीत है उषा खन्ना का।

कराही। इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। ए इरशाद के बोल थे और संगीत किशोर कुमार का।

सावन झूम के इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम के बाकी गाने कुछ इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गाना हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति औरत फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार।

0: विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News

0: सिंधी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सब के बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है। हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए

0: किसी ने क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी। गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए, और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे, और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।
1: रोते

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह ने ले ली है अंगड़ाई और आज का दिन करवट ले रहा है आपकी तरक्की की ओर, आपकी खुशहाली की ओर। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग को म्यूजिकल नोट से सजा रहा है चित्रलोक कार्यक्रम का पहला गाना, भाग मिल्खा भाग फिल्म से। प्रसून जोशी के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का। आवाज है सिद्धार्थ महादेवन की।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

लॉय मेंडोसा, शंकर महादेवन और इलारन की आवाज़ में आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से ये गाना, जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

टैक्सी नंबर 9211 फिल्म से आप सुन रहे हैं अदनान सामी की आवाज में गाना विशाल ददलानी के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं लक्ष्य फिल्म का गाना। शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद का दिन है। आज़ादी के बाद नव भारत के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनकी स्मृति को सादर नमन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। शाशा तिरुपति और अरिजीत सिंह की आवाज में अतरंगी रे फिल्म से ये गाना इरशाद कामिल के बोल यार।

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: रॉकस्टार फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में गाना, इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाजों में अन्विता गुप्तन के बोल, और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: को चूमे ओ हो जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में

बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलिमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
2: हाँ।
1: बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा, जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल रॉय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थीं। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की, इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती, हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी

0: हमें थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज ए फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक कंपोजर, म्यूज़िक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
1: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
0: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
1: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
0: है, बांसुरी वादक
1: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
1: क्या बात है।
0: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
1: जी।
0: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
1: और इन रागों में वाद्यवृंद
0: वाद्यवृंद बनाना, वो भी और उनके चलन के आधार पे
1: जी।
0: अब सा रे ग म प ध नि ज नि ध प म ग रे ज, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ,
1: ये मायने रखता
0: है। 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने
0: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा ध नि सा और SRGM, सारे
1: गामा पा ध नि सा, दोनों नोटेशन करते थे वो,
0: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
1: जी जी।
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं, और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
1: जी।
0: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई
0: एक तरीके से बोल लीजिए, वो ट्रेनिंग भी थी
1: जी,
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना, हाँ, कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, हाँ, वो एक कुटुम्बस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है,
1: हाँ,
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
1: जी,
0: तो और भी बदमाश
1: और भी। तो आप क्या कारनामे में करते थे?
0: हम लोग करते थे बचपन में।
1: शर्मा रहे, बता रहे थे।
0: हाँ, थोड़ा सा शर्मा रहे हो गया। बट हाँ बदमाशी करते थे
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी से चुराए,
0: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
1: थोड़ा
0: इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी,
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: पिताजी आए उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी जी जी।
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
1: अच्छा।
0: इसको कर्मा बोलते
1: वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ तो बदमाशी की है सर। हाँ कभी कभी स्कूल से जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी,
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉय स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: और जमाना भी सख्ती का था,
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
1: कहीं और पहुंच गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या तो हाल होगा।
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
1: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड़ नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी,
0: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल
1: यूज नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा रे गा मा पा नी सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के,

0: वाह
1: जागो
0: वाह वाह,
1: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बचपन
1: वो
0: की नींद,
1: चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
0: बिल्कुल
1: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
0: जी,
1: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
0: खतरनाक जी।
1: पर, वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा
0: जी
1: हूँ।
0: जी
1: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
0: अरे गजब।

0: नहीं, फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से, 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं, अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12, 1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओ हो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे, पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल
0: ये और मैं एक ही है। मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का,
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे, देखो
1: जी जी जी
0: ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी, आपने
1: हाँ,
0: देखी होगी ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं,
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी इसको
1: हमेशा।
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के हैं।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना, ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ
1: हाँ बिल्कुल
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का एक
1: हाँ
0: नोट है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना, उसके लिए
1: आप माध्यम है
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं,
1: जी
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं तो
0: इसका
1: आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता,
1: जी तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं लाया
1: कृष्णा
0: इसलिए
1: बांसुरी
0: हूँ,
1: बजाइए
0: मैं
1: जी
0: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे
1: चले।
0: हमेरे साथ मेरे हमेशा साथ रहता है, ये
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी
0: हाँ
1: बात है।
0: ये कि मेरे फ्लूट किट में रहता है ये।
1: जी जी
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है,
1: जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना,
1: जी
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी जी जी
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं समझ में नहीं आता है, तो
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता
1: ठीक है। और उसके
0: हूँ,
1: बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
0: मैं
1: हैं
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी, अब जैसे ये चल रहा है,

0: पर्जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता है, जब
1: शिशु
0: वो
1: होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब,
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी जी जी
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल भी जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी,
1: उस वक्त म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी, वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर की मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मैडम,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे, और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का,
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
0: जी
1: तब का सुना हुआ है।
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है, और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत

0: अरे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ। वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुलिया इरे कन्हाई।
0: हाँ। अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ,
1: फिल्म का
0: रजिया सुल्तान,
1: गाना
0: तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल।
0: हो। तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम।
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक।
1: क्या बात है।
0: एंड आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम।
1: तो
0: यस,
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था, ऑलराउंडर
1: अच्छा,
0: ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर लाइक अ शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सर बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी,
0: नहीं।
1: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि अब जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: हाँ हाँ
0: कोई
1: बिल्कुल,
0: मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए बस।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले।
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसा रहता था, तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
1: ये
0: मजाक।
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ,
1: होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल
0: पर आप
1: है।
0: इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर
1: फिर
0: वापस,
1: वापस ले
0: आप बार बार
1: आए।
0: मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते।
0: हाँ, स्टूडियो चलते हैं ना
1: स्टूडियो
0: तो
1: चलते।
0: मजा आता
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताई।
0: है।
1: पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: हाँ, वहां पे
1: उनके
0: क्या,
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त। तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी।
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी राग का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो

0: सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी,
1: जी
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना, और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
1: जी
0: तो पूरा एक हमारा चक्कर घूम
1: चक्कर
0: जाता
1: लगता
0: तो वहां पर फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो, और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपने अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस
0: म्यूजिक
1: अकॉर्डिंगली।
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था उनके, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब मैं हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए
1: इतने सारे लोग
0: इतने
1: हैं।
0: सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादातर,
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गज़ल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गज़ल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ है, हसरत

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो
3: कुर्बानी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

नॉन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा, जो कि है ये मिलन ख्वाब सा, इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे ये नगमा, जिसे सबा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव, प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से ये नज़्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज़्म।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे। कार्यक्रम

0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
7: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
6: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
7: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
6: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
8: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
8: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
8: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
9: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा।

ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि

0: से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को

0: प्रयास है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
0: जी
2: चलो संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिने तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की। जय भारत माता की। जय
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नहीं नहीं तू भी बचवाला है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
3: मैं जा रहा हूँ।
4: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।

0: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, योगेश के बोल हैं, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराए फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियां नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती हैं, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहां ठहराव को जीवन के अंत

के रूप में देखा जाता है, जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए है, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहाँ थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और उसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही छोटे एक एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है जिंदगी, फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु, धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर ये। सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा रा हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियां, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियां अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती, दूसरों के कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठे तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियां, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफर चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफर की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई

ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है। जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है। प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है। उस विषय को याद कीजिए और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है?

0: जल।
1: ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मजा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन

में हम वापस चलते हैं हमारी सीखों के लिए, कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरे पिताजी की दी हुई सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य जरूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खोना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमें बोला गया था चाहे ज्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आंख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नजर में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था, तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे जरूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे सफर फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज में, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। जी बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान और दे दो। किसी को और अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगे तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज़ है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वहीं पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था अंतिम समय में सीख, गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहे आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो थोड़े समय के लिए। सही

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है, और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा, और उसका कोई अर्थ भी होता है। ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए, और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उठ कहाँ जाएंगे? उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं। तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता जी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति इस विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी, और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ, कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारी श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें भी

आंखों के बैंक में डोनेट कर दिए, आईज भी आईज बैंक में डोनेट कर दिए। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है, हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? जरा इसका उत्तर आप दीजिएगा, और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है। गायक कलाकारों के नाम बताइए और बताइए क्या बच्चों में कि जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है, और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ, और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है। और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी, तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियां और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है। मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, विधि प्रवीण जैन को नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।
1: हाँ।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है, हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके लिए

किसी ने क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में

0: की आदत डाल लीजिए, और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और 2 बार जोर से ठहाके लगाएंगे, और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।
1: रोते

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
5: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
7: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
8: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
9: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
4: मेरे वतन से

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
3: बिल्कुल,
2: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के निकले जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है ककड़ी है इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं जो सैलेड हैं वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने बचा के रखना
3: जी। और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई मन, क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं कुछ ना कुछ, तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में ले, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन हल्का इस तरह का रेसिपी बना ले,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
3: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह लें।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को सखियों को कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
2: तरह, तो तरह आपके घर में
3: जी
2: तरह तरह के चावल
3: तरह
2: के व्यंजन,
3: तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
2: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
3: बिल्कुल
2: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में, तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है बहुत ज्यादा पसंद है जो आप बना आते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
3: बिल्कुल। और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है आलोचना, तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
2: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
3: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण। हाँ। अब जो घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
2: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
3: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
2: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है इसके और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों का संसार लेकर आए हैं,
3: तो साड़ियों का संसार आज कहाँ चलने वाले हैं?
2: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है।
3: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
2: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
3: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: बहुत बहुत सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि

0: से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
1: जी, कितना इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल। और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
0: क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
1: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
0: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल देना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आंच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल। और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती, मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती हैं कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के

0: में हम बैठे रहते हैं, किस तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम
1: बिल्कुल
0: सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा
0: बिल्कुल
1: है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ एआई चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं। ये इस तरह की रिपोर्ट आई
0: जी
1: है।
0: हाँ
1: और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल,
1: हो रहा
0: ये
1: है।
0: शोध में सामने आया है कि
1: जी
0: बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं। और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे,
1: जी
0: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती
1: बिल्कुल।
0: छाई
1: और
0: रहती
1: हम
0: है।
1: शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक
0: बिल्कुल
1: कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए
0: बिल्कुल।
1: थे।
0: और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी, तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
1: हाँ ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने
0: बिल्कुल।
1: लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए, गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं
0: बिल्कुल
1: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना,
0: हाँ
1: उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गंवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे गेम
1: तो
0: बना रहे हैं ना वो लोग, कि
1: जी
0: जिससे कि वो गेम में लगे रहें, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है, वैसे ही
1: हाँ बिल्कुल
0: बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि
1: तो
0: उनको
1: ये
0: फायदा
1: और
0: हो।
1: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली
0: जी
1: चीजें
0: हाँ
1: हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब
0: बिल्कुल।
1: चीजों से
0: और
1: ना
0: सबसे बड़ी
1: फंसे।
0: बात है दीपक, कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, उससे इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने, दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे कैसे उड़ाते हैं, ये कविता उन्होंने भेजी है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, और बातों का ये सिलसिला जारी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती है, फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीजें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लिए तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब तक आप,
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है, बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया, अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, इसके अलावा वो विविध त्योहारी भी फोन भी जो है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए, क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: खाने की
0: है।
1: इच्छा। तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहले पहले रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है।
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते
0: बिल्कुल।
1: हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसे इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें, जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब अच्छा। पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा, ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है, जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं, चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय है, हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ, और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली वी कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रेन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी मेरे छोटे

0: आंखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई
1: जी
0: एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की.
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो. ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी. मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही. रेडियोलॉजी की ब्यूटिफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं. एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है. ऐसे ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है. अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो. आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है.
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं.
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे
1: जी,
0: रिलेट होता है.
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक, देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी, ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है, आपको आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब

0: आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से, तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से,
1: जी
0: स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट
1: जी
0: प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा। और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर है, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है।
1: अच्छा,
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं।
1: वाह
0: तीन
1: वाह,
0: से 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप
1: बिल्कुल
0: उसे प्ले
1: सुनते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं।

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अच्छा, क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब

0: रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए. तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड. तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया. और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रोका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में. ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन. तो
1: लेकिन ये
0: अगर
1: कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं. उससे में हमारे दो फायदे होते हैं. एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं. एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमिडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए. बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए. ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है. इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन
1: जी जी
0: हार्ट फेल्स. तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में. तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं, 2014 से. तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया. हमारे पास फोटो आए. अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया. उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी. तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया. और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है,
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है. हार्डली 5 मिनट लगता है उसको. एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है. और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता
1: कंट्रीब्यूशन
0: है.
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक अच्छा मकसद है. एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था. CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था.
1: जी
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉय हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है. तो
1: लोगों में
0: उस
1: ये अवेयरनेस आई है
0: अवेयरनेस बहुत,
1: कि ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है।
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है. और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं. तो उसको ये जेन्युइन डर था. तो मैंने बोला, देखो अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं. हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है. अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ. जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो. एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो. और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा. एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला. अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा. तो हमें कोशिश करनी चाहिए. हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं. मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी. तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है. और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं. तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको.
1: बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ

0: ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में एक गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रांग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें, शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लम्प, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लम्प था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
0: प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलोअप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
0: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये

0: बेहद खतरनाक है?
1: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
0: जी।
1: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफेक्ट हुए
0: जी।
1: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो पेशेंट है भारत के, वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
0: सेम दवा।
1: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
1: तो मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
0: पापा जल्दी आ जाना,
1: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
0: सुनते ही ये गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की, जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट

0: डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो. द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस. एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो. सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग. सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट इस ऑफ सॉन्ग है. बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली. अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी. मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो,
1: अच्छा जी,
0: कभी टीवी देखा नहीं. ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी.
1: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
0: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है. पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में. और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल उसके बारे में. और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें. आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट
1: ओहो
0: और 78 MP
1: क्या बात
0: पार्लियामेंटेरियन
1: है।
0: सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया, जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू
1: जी
0: सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि क्योज में यूज करें.
1: क्या
0: और
1: बात
0: पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टरों को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं.
1: जी
0: और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है
1: जी
0: कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिसिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए.
1: जी
0: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

0: दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं आपका अपना आशीष वर्मा। और दोस्तों आपका आज का ये कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवशाली आकाशवाणी 890 अभियान को, जिसके अंतर्गत देश भर में युवाओं को रेडियो, ज्ञान और संवाद की परंपरा से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा जनपद सोनभद्र में आकाशवाणी के माध्यम से एक भव्य प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिक विषयों की समझ और मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने की भावना को विकसित करना था। विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अत्यंत उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का वातावरण ज्ञान, जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धा की भावना से सराबोर दिखाई दे रहा था। प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों जैसे कि सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, खेल, साहित्य, भारतीय संस्कृति और आकाशवाणी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। विद्यार्थियों ने न केवल तेजी से उत्तर दिए बल्कि अपनी सूझबूझ और समझदारी का भी शानदार परिचय दिया। उनमें से कई प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने बच्चों की स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता दोनों की परीक्षा ली। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं केवल जीत हार तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती है। मंच पर बोलने का आत्मविश्वास, टीम भावना, अनुशासन और सीखने की प्रेरणा, बच्चों में ये सभी ऐसे आयोजनों से विकसित होते हैं। आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में देश की संस्कृति, शिक्षा, संगीत, साहित्य और जन जागरूकता को घर घर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए रेडियो आज भी एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जानकारी, मनोरंजन और संवेदनाओं से जोड़ता है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है और जिसमें आपका अपना युववाणी कार्यक्रम युवाओं को अपनी बात रखने, अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की आत्मीयता और उसकी विश्वसनीयता लोगों के दिलों में कायम है। यही कारण है कि आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति, संवाद और ज्ञान की उस परंपरा का सम्मान है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी ओबरा द्वारा आयोजित इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता के संपादित अंश। स्थलीय ध्वनिंकन और संपादन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का, प्रस्तुति सहयोग अचल श्रीवास्तव का और प्रतियोगिता के प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं।
1: आकाशवाणी ओबरा के माध्यम से आयोजित इस प्रतियोगिता में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं। आकाशवाणी एक गौरवशाली 90 वर्ष की यात्रा को पूर्ण कर रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे युवा जो राष्ट्र के युवा होते हैं वही प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। और आकाशवाणी का मोटो भी है, उद्देश्य भी यही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय मतलब सभी के हित की बात जो करता हो और जो सबको सुख देता हो, यानी कि मनोरंजन की भी बात करता हो और जानकारी की भी बात करता हो, यही आकाशवाणी का उद्देश्य रहता है। और जैसा कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी है, मोबाइल पर जुड़ी रहती है, रील्स पर जुड़ी रहती है, रेडियो से उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग रहता है। इससे जुड़िए, देखिए इसमें कितना कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए, करने के लिए। और जब आप आकाशवाणी से जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे कि उसको अपना दोस्त, अपना परिवार का सदस्य मानने लगेंगे और ये जुड़ाव दिन ब दिन गहरा होता जाएगा। बस आपको उससे जुड़ने की और उसको जानने समझने की जरूरत है। और आपके नगर में आकाशवाणी ओबरा है जिसका जुड़ाव आप सबके साथ है। सुनते हैं आप सब?
2: कैसा सुनते हैं?
1: बिल्कुल, बस आप जुड़े हैं यही काफी है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप जुड़ेंगे और सुनेंगे आकाशवाणी, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए फिर इस प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। पहला हमारा राउंड है क्विज, कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे और उस प्रश्न को पूरा सुनने के बाद जो सबसे पहले हाथ को ऊपर उठाएगा, हैंड राइज करेगा, उसको उस प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा हमारा दूसरा राउंड होगा जिसमें आपको एक विषय दिया जाएगा पर्ची के रूप में, जो आप सेलेक्ट करेंगे अपने पर्ची निकाल करके। उसमें जो भी विषय आपको मिलेगा उसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे और आपको 2 मिनट लगातार बोलने का मौका दिया जाएगा उस विषय पर। तो चलिए, इस प्रतियोगिता के साथ मैं आशीष वर्मा और मेरे साथ हैं
2: रानी राष्ट्री।
1: इस प्रतियोगिता के प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन वर्मा जी। चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो हम पहले चाहेंगे कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो टीम ए में कौन कौन है, नाम बताइए।
3: मेरा नाम राहुल यादव है, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ।
4: करण जायसवाल, क्लास 12th स्टूडेंट।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और अब टीम बी में कौन कौन है।
5: सर मैं खुशी हूँ और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ।

0: बहुत अच्छी बात है। आप बताइए अपना नाम।
1: मेरा नाम अभिषेक कनौजिया, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ।
2: टीम सी।
3: मेरा नाम प्रिया शर्मा, क्लास 12th में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम आरती बाना, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ।
2: टीम डी।
5: मेरा नाम रानी जायसवाल है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम अनम बानो, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ।
2: चलिए फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है, आकाशवाणी ओबरा की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? टीम ए ने सबसे पहले हाथ उठाया है।
7: 102.7।
2: बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है टीम ए से हमें मिल चुका है 102.7, 102.7। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसमें जो www तीन बार होता है ना, उसका पूरा नाम बताइए। टीम ए।
7: वर्ल्ड वेब वाइड।
2: बिल्कुल सही जवाब। टीम ए ने फिर से प्रश्न का उत्तर दिया है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं राहुल। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये रहा,
8: भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है?
2: टीम सी।
9: टीम बी।
3: अर्जुन पुरस्कार।
2: गलत जवाब है। अब इसका सही उत्तर है
8: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
2: बहुत अच्छा प्रयास है, कम से कम कुछ तो बोल रहे हैं आप लोग। कंप्यूटर में मॉनिटर का क्या कार्य होता है? टीम बी।
3: सर वो जो हम उस पे अप्लाई करते हैं, जो हम देखने का सोचते हैं, वो हमको सारी चीजें वो दिखाता है, वो हर चीज स्क्रीन पे दिखाता है, जिससे कि हम बेहतर समझ पाए, बेहतर अपने काम को कर सकें।
2: चलिए ठीक है, सही जवाब।
8: अच्छा अगला प्रश्न है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने पार्ट?
2: टीम बी। राहुल फिर से तैयार है।
7: चार कक्ष होते हैं।
2: बिल्कुल सही जवाब। रैम का पूरा रूप है वो क्या है?
7: रैंडम एक्सेस मेमोरी।
2: बिल्कुल सही जवाब। टीम ए ने फिर से प्रश्न का उत्तर दिया है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। राहुल आप जो ये प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं फटाफट और अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप जीके या जीएस से किस प्रकार से जुड़े रहते हैं?
7: कभी कभी मोबाइल से और कभी किताब पढ़ते हैं।
2: बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि आप समय निकालते हैं और किताबों से जुड़े रहते हैं, खासकर क्योंकि आजकल तो बच्चे ज्यादातर कहाँ जुड़े रहते हैं आपको भी पता है, मोबाइल से मौका नहीं मिलता, आप किताबों से जुड़े हैं और समय का सही उपयोग करते हैं। किताबी नॉलेज हम सब जो है उससे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है और स्थायी ज्ञान मिलता है। और अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
8: और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
2: टीम सी। टीम सी बताइए।
3: 26 जनवरी 1950।
2: सही जवाब, 26 जनवरी 1950।
8: और अगला प्रश्न है, मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
2: टीम सी एक बार फिर से हैंड राइज करते हुए।
3: 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन।
2: बहुत अच्छा, शिक्षा का सही उपयोग करते हुए। और अब ये बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? टीम सी।
3: सर गोवा।
2: बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब।
8: अच्छा अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है?
2: टीम सी।
3: सर
2: हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि पहले प्रश्न को सुनिए फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। अब टीम बी की ओर हम चलते हैं।
3: हेमोग्लोबिन।
2: बिल्कुल सही जवाब।
8: भारतीय संसद, जो हमारा संसद है, उसमें कितने सदन होते हैं और कौन कौन से?
2: टीम बी से इस प्रश्न के उत्तर की हमको उम्मीद है।
1: दो सदन होते हैं।
2: हाँ, दो सदन होते हैं, कौन कौन से?
1: राज्यसभा और लोकसभा।
2: जी सही जवाब है।
8: अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है?
9: टीम बी।
1: नाभिक।
2: सही जवाब। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? टीम डी। गलत जवाब। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है?
8: आप सभी जानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किन्होंने लिखा था?
2: रचना है ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता कौन थे, कौन थे इसको, किसने इसे लिखा,
8: किन्होंने लिखा
2: था? चलिए हम बता देते हैं, मोहम्मद इकबाल ने इसे लिखा था। था मन में कहीं ये था ना, और यही आकाशवाणी सिखाती है कि जो आपके दिल में है उसे कहना सीखें, उसे प्रकट करना सीखें, मन में मत घुटिए, मन में मत रखिए किसी चीज को, हो सकता है अभी बताया होता तो एक क्वेश्चन का आंसर आपके खाते में आता। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? टीम ए। राहुल।
7: क्लोरोफिल में, पत्ती में।
2: सही जवाब। चलिए बढ़िया। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं।
8: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
2: टीम सी।
3: 21 जून।
2: बहुत बढ़िया, 21 जून। योग से नाता है कि नहीं है? है ना, करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, योग से जुड़िए। विश्व पर्यावरण दिवस कब हम लोग मनाते हैं? टीम सी की ओर।
3: 5 जून।
2: यानी देखिए 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मना करके पर्यावरण को सुरक्षित

0: लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? टीम सी
1: 5।
0: बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और अब हमारा ये जो प्रश्न मंच का पहला पार्ट था क्वेश्चन आंसर का, अब यही समाप्त होता है। थोड़े से इंतजार के बाद हम फिर से आपसे मिल रहे हैं, जो हमारा अगला अंक है जिसमें हम आपको कुछ पर्चियां देंगे, आप एक पर्ची उसमें से सेलेक्ट करेंगे और उस पर आप जो आपको कहना है उस विषय के संदर्भ में आप आकर के उसको बताएंगे।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अब हम फिर से हाजिर हैं सेकेंड राउंड के लिए। आप लोगों के सामने कुछ पर्चियां दी जाएंगे, उस पर्चियों में से आप एक पर्ची यानी एक टीम एक पर्ची सेलेक्ट करेगी और जो भी विषय उसको दिया होगा यानी उस पर्ची पे लिखा होगा, 5 मिनट की तैयारी करने के बाद आप दोनों में से जो भी कंफर्टेबल होगा लगातार 2 मिनट तक उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको दिमाग में रखिए और उसको आकर के यहाँ पर बोलिए और 5 अंक का ये प्रश्न होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो चलिए सबसे पहले हम टीम ए के पास आते हैं। आप अपने पसंद से एक पर्ची निकालिए।
5: तो टीम ए अपना पर्ची सिलेक्ट करें।
4: और अब टीम बी, अब बारी है टीम सी के पर्ची निकालने की। और अब आखिर में टीम डी एक पर्ची के साथ, दूसरे अंक के साथ तैयार हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आप सभी टीमों को जो सब्जेक्ट मिले हैं यानी पर्ची पे जो बोलने का विषय मिला है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम टीम ए की तरफ चलते हैं। टीम ए बताइए, आपको किस विषय पे बोलने के लिए मिला है?
6: ऑनलाइन स्टडी के फायदे और नुकसान।
4: बिल्कुल। टीम बी, आपको क्या विषय मिला है?
7: साइबर क्राइम।
4: टीम सी,
8: नशा नाश की जड़ है।
4: अच्छा टॉपिक है।
8: यस सर।
4: बहुत बढ़िया। टीम डी, आपको क्या मिला है बोलने के लिए?
9: आत्मविश्वास का महत्व।
4: कितना आत्मविश्वास है किस विषय पर आप बोल सकते हैं?
9: बोल सकते हैं हम आत्मविश्वास के महत्व पे, हमको अपने आप पे विश्वास।
4: बस यही बात है कि हमें विश्वास है कि हम आत्मविश्वास पे बोल सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। तो सबसे पहले हम टीम ए से आमंत्रित करेंगे, जो विषय उनको मिला है उस पर 2 मिनट लगातार आप बोलेंगे।
10: मेरा नाम राहुल यादव है, मैं टीम ए से हूँ। मैं शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र से हूँ और मुझे ऑनलाइन स्टडी के फायदे और नुकसान के बारे में बोलना है। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलने के लिए मौका दिया है और सभी टीचर्स और प्रिंसिपल ने मुझे इसके लिए चुना है, इसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये ऑनलाइन स्टडी क्या होती है? जो ऑनलाइन स्टडी होती है इसमें हम लोग मोबाइल से घर बैठ के कुछ भी स्टडी से रिलेटेड जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ते हैं। और इससे ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में क्लास में जो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और ऐसे बच्चे जो घर पे मोबाइल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी वीडियोस हैं उनसे अच्छे समझ सकते हैं। और जो टीचर्स हैं वो कुछ कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो बहुत विस्तार से समझता है, जैसे मैं भी एक टीचर पढ़ता हूँ मोबाइल पे भी और स्कूल में भी, तो दोनों ही बहुत विस्तार समझाते हैं। और जब दोनों मिल के समझाते हैं, दोनों का जब मिल के मैं समझता हूँ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ एक यही फ़ायदा होता है कि जो मोबाइल होती है उसमें हम बार बार एक ही चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें समझ नहीं आए तो हम उसे वापस देख लेंगे, लेकिन अगर स्कूल में है और एक बार समझ नहीं आ रहा है तो उसको ज़्यादातर बार बार नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर्स के पास भी बहुत टाइम नहीं है, बाकी टीचर्स को भी पढ़ाना होता है। और इसके अलावा मोबाइल पे हम लोग को एक टाइप की टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग पास ऑप्शन होता है कि दूसरे टाइप के टीचर समझे या तीसरे टाइप के समझे। इससे हम लोग को ये होता है कि ये इसका समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे टीचर के पास चले जाते हैं। और जो हम लोग को कोई डाउट होता है तो या तो हम लोग वहाँ पे कमेंट पूछ लेते हैं या किसी व्हाट्सएप नंबर पे उन्हीं के दिए रहता है तो उससे पूछ लेते हैं। और एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ बच्चे जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये जो ऑनलाइन होता है इससे उन बिना पैसे के भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जिससे उनका फ़ायदा होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो

0: इसके साथ साथ जब हम घर बैठ के पढ़ते हैं तो हमारे माता पिता जो होते हैं वो समझते हैं, हम लोग को ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें भी पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई को लेकर सीरियस है या किसी और चीज़ के लिए भी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट का सही उपयोग किया और जो विषय इनको दिया गया था उस विषय पर उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छा प्रयास।
2: और अब हम बुलाने जा रहे हैं टीम बी को।
3: हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी और मैं क्लास 11 से शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट ओबरा स्कूल से टीम बी। और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर एंड मैम, थैंक यू आपने बोलने का हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बातें कुछ जानकारियाँ आपको दे सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम पे। साइबर क्राइम जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है और ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि लोग जो आम लोग हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी के फ़ोन पे OTP मांग के उसके बैंक अकाउंट का पैसा लिया जा रहा है। और जो इस टाइप के जो क्राइम होते हैं उसको हम बोलते हैं क्राइम अरेस्ट, और ये भी क्राइम बढ़ रहा है। और जो लोग अपनी फ़ोटोज, अपनी पर्सनल डिटेल्स जो अपने पास रखते हैं, लोग उनको भी गलत यूज़ करते हैं। और जो कंपनीज़ है वो अपनी आइडियाज, अपनी प्रेजेंटेशन जो अपने पास रखते हैं, लोग उनको भी चुरा लेते हैं। और ये समस्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। और बैंकिंग में भी आपके अकाउंट को हैक कर लिया जा रहा है। लोग इससे इतने ज़्यादा आजकल परेशान हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इससे हम बचे कैसे। तो आज मैं आप लोग को ये भी बताती हूँ कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। आप आकाशवाणी जो कि हमारी हर चीज़ में हेल्प करती है हर चीज़ में, तो वो आपको इस चीज़ के भी बारे में उपाय आपको देगी। और सबसे पहली बात, आपको अपना अकाउंट, अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको बहुत अच्छे से बहुत सेफ रखना पड़ेगा। इसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जो कि गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है वो है 1930। वो हमें हर चीज़ से बचाएगी। ये जो साइबर क्राइम रोज आए दिन ये चलता रहता है उससे वो हम लोगों को बचाएगी। थैंक यू फॉर दिस।
4: टीम डी से खुशी अभी बोल रही थी, टॉपिक था इनका साइबर क्राइम और बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया।
1: टीम बी के बाद अब बारी है टीम सी की।
5: आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मेरे प्रिय मुख्य अतिथि जी, मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मैं शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा सोनभद्र में पढ़ती हूँ। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर बात है। उस टॉपिक का नाम है नशा नाश की जड़ें। जैसा कि टॉपिक से ही पता चला है कि नशा जो है वो नाश का जड़ है। नशा क्या है, नशा मतलब नशे कैसे लगता है, नशा आसपास का माहौल देख के हमें, क्योंकि वहाँ की जैसी संगति रहेगी वैसा माहौल होगा। अगर हम अपनी संगति अच्छा रखें तो हमें नशे से दूर रह सकते हैं। नशा एक ऐसा है जो हमें ही नहीं हमारे पूरे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और हाँ, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश प्रगति करेगा। तो अगर देश को प्रगति बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद स्वस्थ रहना होगा, तभी हमारा भारत उज्जवल और विकास करेगा। अगर हम अच्छे की संगत में रहे तो हम नशे से दूर रह सकते। अगर हमारा दोस्त या हमारे कोई भी हम जिसके साथ रहते अगर वो नशा कर रहा है, पहले तो हमें वो फोर्स करेगा कि तुम भी करो। अगर हम अपने पे खुद कंट्रोल कर ले तो वो ठीक है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम नशे से ग्रसित हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत ही और हमारे साथ ही हमारे पूरे परिवार के लिए वो बहुत ही दुखद विषय होगी। क्योंकि अगर घर का एक भी व्यक्ति अगर नशे से ग्रसित है तो घर परिवार में लड़ाई झगड़े जिसके वजह से विवाद और घर में कलेशें होंगी, जिसके वजह से घर का माहौल भी बिगड़ जा सकता है। भारत को जो प्रगति बनाना है उसके लिए हमें नशे से दूर रहना होगा। अगर हम नशे में रहेंगे तो हमें मानसिक तनाव भी बहुत होगी, हम बहुत ही पीड़ित होंगे जिससे हम डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं और तनाव बहुत हो जाएगा।
1: बहुत अच्छा प्रयास, आपका 2 मिनट का वक्त अब पूरा होता है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, नशा नाश की जड़ है। अगर घर में नशे की लत लग गई, शुरुआत हो गई, तो पूरा घर पूरा चरित्र नष्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं उस नशे की लत की वजह से व्यक्ति का तो नुकसान होता ही है, साथ ही देश निर्माण में जो उस व्यक्ति का योगदान होता है उसकी भी कमी रह जाती है।
6: और अब हम इस राउंड के लिए टीम डी को आमंत्रित कर रहे हैं। टीम डी से मैं रागनी जायसवाल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र से मैं पढ़ती हूँ क्लास 12।

0: जी, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मविश्वास न होने के कारण आज के युवाओं को देख सकते हैं कि शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। आत्मविश्वास न होने के कारण युवाओं आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे अंदर विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए बड़े से बड़े काम भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास न हो तो शिक्षा में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, और जो टीचर पढ़ाते हैं उसको न समझ आने पर आत्मविश्वास न हो तो नहीं पूछ सकते हैं, और आपको लगता है कि आप अपना मजाक बना रहे हैं। इसलिए आत्मविश्वास होना जरूरी है, क्योंकि आप शिक्षा को, जो विद्या है, उसको अच्छे से ग्रहण करें और उसके बारे में जानें। आत्मविश्वास होता है तो खेल को भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो दिमागी, मतलब कि दिमाग से खेलते हैं। युवाओं में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, क्योंकि वो फोन अधिक चलाते हैं, इंटरनेट से कनेक्शन रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ना अपने से बड़ों को बात मानते हैं, ना उनसे बातें करते हैं, इसलिए आत्मविश्वास की कमी हो गई है।
1: बढ़िया प्रयास रहा
2: टीम डी अपने आत्मविश्वास के साथ थे। इसी के साथ हमारा ये जो दूसरा राउंड था वो भी समाप्त होता है, और बस अब थोड़ी ही देर में हम अनाउंस करेंगे कि कौन विजेता टीम है। तब तक आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। बारी है विजेता टीम के अनाउंसमेंट की, कि कौन जीता। क्या लगता है आप लोग का कॉन्फिडेंस क्या है?
3: सर 80%।
2: 80% यानी कि टीम बी बोल रही है कि वो 80% जो है श्योर है। टीम ए
4: 50%।
2: क्या बात है। टीम सी कितना कॉन्फिडेंस है कि आप विजेता होंगे?
5: सर मुझे अपने पे विश्वास है कि मैंने जितना काम, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीम डी आपका आत्मविश्वास क्या कहता है?
6: मेरा आत्मविश्वास अभी हिला हुआ है।
2: ये भी अच्छी बात है कि आत्मविश्वास का आत्मविश्वास हिला हुआ है,
7: और इसी को मजबूत भी करना है।
2: चलिए ठीक है, अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको बताते हैं कि कौन सी टीम विजयी रही है। उस टीम का नाम है टीम ए, आपका जिसका 50% 100% हो चुका है। ठीक है, इस टीम में थे करण जायसवाल और राहुल यादव। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो कैसा लग रहा है विजेता टीम बनने के बाद?
4: अच्छा लग रहा है।
2: बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और ऐसा नहीं कि टीम ए विजयी रही है तो बाकी टीमों का प्रदर्शन खराब रहा है। टीम बी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, टीम सी ने भी जो बोला बहुत बढ़िया, और टीम डी का प्रयास भी बहुत बढ़िया था। बस मौके की बात है कि किसने हैंड राइज किया, किसने पहले उत्तर दिया, और कौन किस विषय पे आके किस तरीके से अपने उस समय का यूज करते हुए बता सके। तो सब मिला जुला करके आप सभी का प्रयास बहुत अच्छा था। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब ये हमारा प्रश्न मंच जो कार्यक्रम था आकाशवाणी 890 के अंतर्गत, जिसे हम आयोजित कर रहे थे आपके लिए कि हमारे युवा हमसे जुड़े, इसका समापन अब यहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और साथ ही हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं।
8: कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित तो किया ही गया, साथ ही सभी विद्यार्थियों को भविष्य में भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। विद्यालय परिवार और आकाशवाणी के इस संयुक्त प्रयास ने निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में सीखने और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा जगाई है। आज के समय में जब युवा मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित होते जा रहे हैं, तब आकाशवाणी जैसे मंच बच्चों को ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मक संवाद से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न मंच प्रतियोगिता के सफल समापन के पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय इस विशेष आयोजन की सराहना करते हुए अपने विचार साझा किए। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग।
9: मैं मुकुंद सिंह गौर, शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा में ऐसे पावन अवसर पर हमारे विद्यालय में आकाशवाणी ओबरा से श्री सचिन वर्मा जी, श्री आशीष वर्मा जी, रानी राजश्री जी और श्री अचल श्रीवास्तव जी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें इन लोगों का जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जब से आकाशवाणी स्थापित हुआ है तब से 90 वर्ष इनका पूर्ण हो रहा है। तो इसी कड़ी में आकाशवाणी @90 प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आकाशवाणी का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है और लगातार अपने प्रयास से दिन पर दिन जो है सामाजिक समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का उन्नयन कार्य करती चली आ रही है। और हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि आकाशवाणी में बहुत दूर दूर के प्रोग्राम और हर जगह पर, भारत में सभी जगह पर छोटे छोटे गांवों के प्रोग्राम, किसानों के लिए प्रोग्राम आज सभी आयोजित होते रहे हैं, युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए सभी तरह के प्रोग्राम आकाशवाणी द्वारा हमेशा से आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारे विद्यालय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज ओबरा में इन कार्यक्रम का आयोजित करना, हम आकाशवाणी टीम को तहे दिल से अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। समाज में जो आकाशवाणी का योगदान है ये सराहनीय है, इसके लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे और आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यालय में आकाशवाणी ओबरा से लगातार बीच बीच में आकर के प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, और भी तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएं कुछ प्रतियोगिता के अतिरिक्त, तो हम सभी से ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।
8: तो दोस्तों, आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की संस्कृति और बौद्धिक विरासत से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। हमें उम्मीद है कि शिक्षा निकेतन परिवार इस आयोजन का हिस्सा बनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। बस इन्हीं बातों और विचारों के साथ आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये अंक, आज की ये प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और अब कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दे अनुमति, सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा के साथ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों का बाल संघ।

बच्चों जय हिंद। बाल संक्रांत कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज कार्यक्रम में मैं हूँ साजिदा दीदी। तो बच्चों आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, मनोरंजन कराएंगे एक प्यारे से गीत से और बच्चों के मुख से भी सुनवाएंगे, साथ ही कुछ जानकारी भी देंगे। तो बच्चों आप सब तैयार हैं कार्यक्रम सुनने के लिए? बच्चों पहले बताइए आप सब कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि अब तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों की मौज ही हो गई है। अब देखिए स्कूल जाने का झंझट भी नहीं है, लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखिए कि छुट्टियां सिर्फ सोने और खेल कूद में ही न बिता दें, बल्कि छुट्टियों का सही उपयोग भी करें। बच्चों देखिए एक बात और कि गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिए, बिना काम के धूप में बाहर न जाएं, और अगर बहुत ज़रूरी काम है तो पानी पीकर टोपी लगाकर ही बाहर जाएं, और दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पिएं। प्यास नहीं भी लगी है तब भी पानी पी लीजिए। इसके अलावा बच्चों दही छाछ नारियल पानी पीजिए और यह पाचन क्रिया को सही रखने और शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। बच्चों इस गर्मियों में तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी ये सब भी खाइए, लेकिन कुछ

बच्चे तो ये सब खाना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें तो बस लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए, लेकिन उसके लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों, कोल्ड ड्रिंक सही नहीं होती, आप तरबूज खरबूजा खाइए तो इससे आपकी सेहत और भी अच्छी बनेगी। और बच्चों, तरबूज खरबूजा में पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जो शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं, जबकि खीरा और ककड़ी में फाइबर और पानी खूब होता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। बच्चों देखिए, गर्मियों में ज़्यादा तला भुना और जंक फूड न खाएं, क्योंकि ज़्यादा ऑयली फूड खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और पाचन धीमा हो जाता है। और इस समय कोशिश करिए कि ताज़ा बना हुआ खाना ही खाएं, बाहर के खाने से बचें। गर्मियों में सही डाइट का मतलब है हल्का सुपाच्य और हाइड्रेटिंग भोजन। भरपूर पानी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, छाछ और सत्तू का सेवन करिए। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, एनर्जी देता है और पेट की समस्याओं से भी बचाता है। बच्चों, जब गर्मी बढ़ती है तब शरीर पर गर्मी का असर भी दिखने लगता है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ज़्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान, चक्कर आना, सिर दर्द और डिहाइड्रेशन, एसिडिटी, ये सब भी हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, आप भी बाहर खेलने जाते होंगे, खूब पसीना भी होता होगा, प्यास भी लगती होगी और साथ ही साथ थकान भी होने लगती है। बच्चों, आप कोशिश करिए कि या तो बिल्कुल सुबह खेलें जब स्कूल नहीं जाना है, या फिर बिल्कुल शाम को जब धूप ख़त्म हो जाती है तब खेलिए। और गर्मियों में स्वस्थ रहने और छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ सही डाइट भी लीजिए, हल्का और सुपाच्य भोजन करिए, क्योंकि सही डाइट अपनाने से पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। बच्चों, आप एक बात बताइए कि आप बड़ों का कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं? कहीं ना कुछ बच्चे तो मान भी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे झूठ बोलकर अपने मन का काम कर लेते हैं। फिर उनके मन में एक डर तो हमेशा ही बना रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। बच्चों, झूठ बोलकर आप कभी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। हो सकता है कि एक दो बार का झूठ आपका पकड़ में ना आए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। बच्चों, एक बार की बात बताते हैं कि तीन दोस्त मिले, क्योंकि उनकी गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं और सब ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो नदी के घाट पर चलते हैं, वहीं नहाएंगे, पिकनिक मनाएंगे और फिर घर आ जाएंगे। बस तीनों दोस्तों ने घर में किसी को भी नहीं बताया न पूछा, बस आपस में सलाह की और चल दिए। वहां जाकर सबने पार्टी की, नदी में नहाने लगे, तभी बच्चों पता है एक दोस्त का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में जाने लगा। यह देखकर उसके दोस्त तो घबरा गए वो दोनों और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तभी इत्तेफाक से उधर से कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने बच्चों की आवाज़ सुनी और फौरन दौड़ कर आए और बहुत मुश्किलों से उस बच्चे को बचाया। तब जाकर सभी बच्चों को सुकून मिला और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन बच्चों, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सब ठीक ठाक से घर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। ज़रा सोचिए बच्चों, अगर क्या भी हो सकता था, या हो सकता है कि वहाँ उस वक्त कोई नहीं मिलता, वो गहरे पानी में जाने लगता, तो ज़रा सोचिए वो तीनों दोस्त आज इकट्ठा हो पाते, नहीं ना? इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि बड़ों का कहना ज़रूर माने। आपके बड़े जो भी कहते हैं आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं, इसलिए आप उनकी बात का बुरा न माने, क्योंकि अक्सर बच्चों को बहुत बुरा लग जाता है, कभी अपनी ज़िद मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ बच्चे तो बहुत ज़िद करते हैं तो माता पिता को उनकी फरमाइश पूरी कर ही देते हैं, लेकिन बच्चों, हमेशा ज़िद करके अपनी बात मनवाना सही नहीं है। ज़रा सोचिए, माता पिता आपके भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर सफलता पाए, और इसके लिए वे हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं, आपको रोकते हैं, गलत करने पर टोकते हैं, बेवजह घूमने

पर टोकते हैं और बेवजह जंक फूड खाने पर भी रोकते हैं। लेकिन बच्चों, यह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही ज़रूरी है, और इसलिए बच्चों, आप सब बड़ों का कहना ज़रूर मानिए। तो बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए बच्चों, बातें अभी और भी होंगी, उससे पहले आपका मनोरंजन करा दें एक प्यारे से गीत से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बच्चों, इस संदेश से पहले आपने गीत सुना और गीत आपको बच्चों पसंद भी बहुत आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई के बारे में और वाचन है सहर परवीन, जो कि शिक्षिका है उच्च प्राथमिक विद्यालय बर्दिया में।
2: प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भारत की एक ऐसी वीर महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका नाम इतिहास में बहादुरी और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी में हुआ और ये 4 अप्रैल 1857 में वीरगति को प्राप्त हुईं। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी महान हस्ती है, तो बच्चों उनका नाम है झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत साहसी और निडर थीं। कहा जाता है कि वो छोटी उम्र से ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना जानती थीं। उनमें आत्मविश्वास बहुत था और वो किसी भी डर से घबराती नहीं थीं। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता ने उन्हें लड़कों की तरह पाला था, घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया था। एक बार झलकारी बाई जंगल में गई, वहां तेंदुए से उनका सामना हुआ और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार गिराया था। बड़ी होने पर उनकी शादी पूरन सिंह कोली नाम के एक सैनिक से हुई जो झांसी की सेना में काम करते थे। शादी के बाद झलकारी बाई का संबंध झांसी के राजमहल से जुड़ा। उनकी बहादुरी देखकर लोग बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे वे झांसी की सेना का हिस्सा बन गए। झलकारी बाई की सबसे खास बात ये थी कि उनका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से काफी मिलता जुलता था। इसी कारण वो रानी की सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बन गईं। उन्होंने घुड़सवारी, तलवार चलाना और युद्ध करना और अच्छे से सीखा। वे केवल रानी की मददगार नहीं थी बल्कि एक सच्ची योद्धा थी। प्यारे बच्चों, जब 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई शुरू हुई, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उस समय झांसी पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ बहुत बहादुरी से लड़ रही थीं, पर एक सेना नायक ने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों के लिए किले का एक संरक्षित द्वार खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया, झलकारी बाई ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। क्योंकि वो रानी लक्ष्मीबाई से काफी मिलती जुलती थीं, इसलिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किया, उनकी तरह कपड़े पहने और खुद अंग्रेजों के सामने चली गईं। अंग्रेज धोखा खा गए और उन्हें रानी समझ बैठे। इससे असली रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकलने और आगे की लड़ाई को जारी रखने का समय मिल गया। सोचो बच्चों, किसी दूसरे की जान बचाने और अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कितना बड़ा साहस है। झलकारी बाई ने बिना डरे ये काम किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चा देश प्रेम क्या होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि झलकारी बाई के बारे में इतिहास में उतना नहीं बताया गया जितना बताना या पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आज लोग उनके योगदान को समझ रहे हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए अमीर होना या राजा होना जरूरी नहीं है। अगर किसी के अंदर हिम्मत और सच्चाई हो तो वो इतिहास को बदल सकता है। झलकारी बाई महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। उन्होंने ये सिखाया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। वे बहादुर भी हो सकती हैं, मजबूत भी और देश के लिए बलिदान भी दे सकती हैं। बच्चों, हम सभी को झलकारी बाई से

0: बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें मुश्किल समय में डरना नहीं चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए और अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि झलकारी बाई केवल एक वीर महिला नहीं थी, बल्कि साहस, त्याग और देशभक्ति की मिसाल थी। हमें हमेशा ऐसे महान लोगों को याद रखना चाहिए और उनकी जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई की बहादुरी को पंक्तिबद्ध किया है। आकर रण में ललकारी थी, वो झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जोहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वो भारत की सन्नारी थी। धन्यवाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बच्चों, अभी आपने स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई के बारे में सुना और बता रही थी सहर परवीन जी, जो कि शिक्षिका हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्दिया में। चलिए बच्चों, अब आपको बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है।
3: मेरा नाम आहाना है, मैं क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ। मैं ईश्वर की हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, इससे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। मैं आज आपको एक प्रार्थना सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मधुर पावन वचन तेरा। मधुर पावन वचन तेरा, रहा में दीपक मेरा, ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर, ले चल प्रभु मुझे सत्य की।

ले चल प्रभु मुझे जीवन की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। ले चल प्रभु मुझे जीवन की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। थैंक यू। मैं आपके सामने एक और प्रार्थना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे भगवान दिल में आओ। ईश्वर की प्रार्थना करने से हमारे मन में जो भी मन अंधकार रहता है वो मिट जाता है और हमें सही और गलत की पहचान होती है।

0: मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नई राह। इस कविता में हमें बताया गया कि हम अपने देश की रक्षा और सेवा कैसे करें। हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे, धरती माता की गोद में फसलें नई उगाएंगे। हम हैं प्रेम के अमर पुजारी, तूफानों से टकराएंगे, ज्ञान के दीप जलाकर घर घर जगमग जग चमकाएंगे। नहीं डरेंगे हम विघ्नों से, संघर्षों से भिड़ जाएंगे, मानवता के फूल खिलाकर जग की बगिया महकाएंगे। हम भारत माँ के सपूत नव जीवन अपनाएंगे, नए देश की रचना करेंगे, नई राह दिखलाएंगे। हम भारत माँ के बच्चे हैं, तूफानों से टकराएंगे। थैंक यू
1: बच्चों। अभी आप सुन रहे थे बच्चों के मुख से, और आज गीत कविता सुना रही थी अहाना जी। तो बच्चों आपने देखा कितना अच्छी तरीके से वो सुना रही थी और कितनी उसको याद भी थी। चलिए बच्चों अब आपको बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और उनका जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों आपको तो ये पता ही है, स्कूल में कार्यक्रम भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें हिस्सा भी लेते हैं, है ना बच्चों? और वो बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय थे, उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। बच्चों उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। 15 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड गए और वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री ली। भारत लौटने के बाद वे राजनीति से जुड़ गए। यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे, इसीलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी वो शामिल हो गए। बच्चों पंडित नेहरू जी शुरू से ही गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और वो कांग्रेस से भी जुड़े। 1920 में प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। बच्चों साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू जी भी भाग लिए थे और उस दौरान नेहरू जी घायल हुए और नमक आंदोलन में गिरफ्तार भी हुए और 6 महीने की जेल की सजा भी काटी। उन्होंने अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा लिखी, उन्होंने विश्व भ्रमण किया और एक अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने गए। बच्चों जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान करना, योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से करना उनके मुख्य उद्देश्य थे। बच्चों पंडित नेहरू जी को औद्योगिकरण, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा जैसे IIT और इसरो की नींव का श्रेय भी दिया जाता है। बच्चों हर साल 27 मई को पूरा देश, विशेष रूप से राजनीतिक नेता और नागरिक शांति वन जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी समाधि पर नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करते हैं। बच्चों चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाली क्यों होती है। पेड़ पौधे और पत्तों में कुछ रंगीन पदार्थ होते हैं और इसके कारण ही पत्ते रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे एक पदार्थ क्लोरोफिल होता है, यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। बच्चों आपने कुछ पत्तियों का रंग पीला भी देखा होगा और यह पीला रंग उनमें मौजूद कैरोटीन नामक पदार्थ के कारण होता है। बच्चों कुछ पौधों की कोपलें हल्का लाल या गुलाबी होता है, पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसमें मौजूद एंथोसाइनिन पदार्थ होता है। और अपनी प्रारंभ में अधिकतर पौधों की कोपलें का रंग हल्का लाल, गुलाबी या हल्का पीला होता है। इसका कारण कैरोटीन या एथोसाइनिन पर होता है और ज्यों ज्यों पत्तियां बड़ी होती रहती हैं वैसे वैसे उनका रंग हरा होता जाता है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल बढ़ता जाता है। बच्चों, सूर्य में 7 रंग होते हैं और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल के कारण हरा रंग परावर्तित और शेष रंग अवशोषित हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ हरा रंग ही दिखाई देता है। और बच्चों, आपको पता है प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे क्लोरोफिल की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल से प्रकाश की मौजूदगी में पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मशरूम और फफूंद भी एक प्रकार के पौधे ही हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इसी वजह से यह पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। यह भोजन के लिए दूसरे सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें परजीवी पौधे कहा जाता है, यानी कि अगर पौधे में क्लोरोफिल न हो तो पेड़ पौधों में हरियाली नहीं होती है। पेड़ पौधों में हरियाली सिर्फ क्लोरोफिल के कारण ही होती है। बच्चों, देखिए इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। और पानी तो इस समय एकदम अमृत समान है, और ये नहीं बच्चों कि कहीं भी पानी मिला पी लिए, बल्कि आप कोशिश करिए कि जब भी पानी पीना हो तो साफ पानी पिए, क्योंकि साफ पानी हमें बीमारियों से बचाता है। और बच्चों, इसके अलावा स्वच्छता का भी ध्यान रखिए, रोज नहाएं, साफ कपड़े पहने, बल्कि आजकल तो इतनी गर्मी है कि सुबह शाम दोनों टाइम नहाएं। और जब भी बच्चों आप बाहर से आए तो हाथ पैर अच्छी तरह से धोएं, फिर कुछ खाए पिए। तो बच्चों, इसी के साथ ही बाल संघ कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो रहा है, तो अब बच्चों से विदा लेते हैं। बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलन का मंत्रिमंडल समिति सीसीईए के बैठकी में आज राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता, सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय योजना के एगो व्यापक योजना के तौर पर जारी रखले के मंजूरी दे दल गई। 16वां वित्त आयोग के आवंटन अवधि में यह सार्थक पीडीएस योजना में केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रूपया का परिव्यय कैल जा रहा बा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतौलें कि मंत्रिमंडल का यह फैसला 80 करोड़ देशवासियों के प्रभावित करी।
1: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में

0: इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में, इसका एक उदाहरण दिया जाता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के ओर से करावल गयल मतदाता सूचियन के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के वैधता के बरकरार रख ले हो। एगो रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के मुताबिक निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 आ ओकरे अधीन बनल नियम के तहत SIR करवौले के शक्ति रखेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE फरियाद देहले हो कि उत्तर पुस्तिकन का मूल्यांकन बदे उपयोग कैल जाए वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कौनो सुरक्षा उल्लंघन नाही भइल बा। बोर्ड सोशल मीडिया पर कैल जा रहल दावन के खारिज करत कहलस कि उत्तर पुस्तिकन का वास्तविक मूल्यांकन बदे इस्तेमाल कैल जाए वाला पोर्टल पुरहर तरीका से एगो अलग URL पर काम करेला। एगो रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सन में बढ़त तापमान के देखत लोगों के सावधानी बरत लेकर सलाह देले हमें। एगो रिपोर्ट।
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों से संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रदेश में तेज घाम, भीषण गर्मी या लू से जनजीवन प्रभावित बा। उहर मौसम विभाग राज्य में बिहने से 31 मई के बीच बरखा भइले के पूर्वानुमान जारी कैले हो। विभाग बिहने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरखा के साथे बिजली गिरले या तेज झोंकेदार बियार चलने के अलर्ट जारी कैले बा। साथही कहीं कहीं दिन के समय लूहो चलले के चेतावनी दिहल गइल हो। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में आज एगो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और साइकिल के टक्कर में दुई जने का मौत हो गई। ओइजा का पुलिस बतौलस कि कादीपुर दोस्तपुर राय पर सरैया बाजार के लगे भइल एह सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार के ओहजुक मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार अस्पताले ले जा समय दम तोड़ दिले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
4: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नंदू भैया तो के भी राम राम।
0: आपके भी राम राम जग्गू भैया। और बताओ भैया
1: हाल चाल तो देखा एकदम ठीक है बाहू। देखत हुआ जवन घाम जवन

0: घाम जवन घाम भैया की उहाई खुलत बाय, अब मुहे पर भैया चमक रहत बाय।
1: जग्गू
0: अब
1: भैया,
0: समझा ले इतना गर्मी पड़त बा, इतना घाम पड़त बा, भैया रात भी कायदे से ठंडा नहीं हो पावत।
1: जग्गू भैया
0: हाँ।
1: देखा अपन नौतपा लगल बा भैया, और जब नौतपा आवला ना भैया तब पूरा अपन माटी से लेके शरीर से लेके भैया सब पूरा तपे लगला। और भैया जब नौतपा के बात कैला, गर्मी के बात कैला, तब भैया देखा कह जाला ना कि भैया जैसन समय आवे ना वैसने भैया अपन जुगाड़ रखे के चाहिए, वैसने अपन एहतियात बरते के चाहिए।
0: भैया समय का मतलब नहीं समझ कुछ
1: भैया
0: भी
1: समय
0: हो
1: के
0: नहीं।
1: मतलब कि जवन आपके ही भैया लू लगाता भैया, ये समय जवन आपन कहत हुआ कि भैया न दिन के चैन न राती के चैन बा, तो भैया इस चैन कैसे आवे या कैसे शरीर सुरक्षित रहे भैया, ये तो अपन सोच ही के हुई। आ देखा सोचे में का करे के बा भैया, देखा गांव देहात से है भैया, बस जुगत खाली अपनावे के बा। देखा बेल के शरबत हो गए, चाहे भैया नींबू पानी हो गए, ककड़ी खरबूजा छाछ दही मंठा या आम भैया देखा लटकल बा तूड़ा भैया, हमारा रोज 4 गो आम के पन्ना भैया, काहे नहीं शरीर सही रही। और प्याज तो देखा भैया अपन कहीं ना कहीं भैया
0: नंदू भैया देखा यह बात हम कहल चाहतली है कि प्याज तो भैया तू अपन उपयोग कर ले बा, छाछ भैया अपन उपयोग कर ले बा, बेल अपन उपयोग कर बा। भैया हर भैया के द्वारे पर पेड़ पौधा नहीं बांटा है, हम आम पर कपन्ना पिए को ही तो उपयोग कर बा, भैया दूसरा ही में ढेला मारे के है। तो हमारे कहले का मतलब वो काहे नहीं भैया नौतपा असर दिखाई, भैया ना असर दिखाई ना, जब वो जोन का परत मास्टर भैया कहते हैं भैया पतील हो जाते, भैया पेड़ पौधा इतना पर्यावरण में भैया प्रदूषण हो गल, सूर्य करोशनी का जोन विकिरण है वो सीधे शरीर पे आवत बा, तो भैया गर्मी बढ़ी। अरे भैया पेड़ पालो लगावा, भैया बेल खाए के हो तो अपने दुआरे पर का तोड़
1: बिल्कुल
0: के
1: जग्गू
0: खा,
1: भैया
0: आम
1: एकदम
0: खाए के हो तो भैया दुआरे पर का खा, अमरूद खाए के हो भैया दुआरे पर का खा। अब भैया ढेला संभाल के दूसरे पर का एक तो झगड़ा मोल ला और दूसरे भैया शराब भी सुना।
1: आज जग्गू भैया देखा कई लोग तो भैया अभी भी ऐसा अपन पंच भैया लोगन हवा भैया जोन इस समय जोन बाना भैया कहें कि भैया माटी देखा सही नहीं बा, ते में धान ना होता तो गेहूं ना होता। भैया देखा माटी तो भैया माटी तो हमेशा सोना बा भैया, बस परखे के जरूरत बा। जैसा आप कहले कि भैया पेड़ लगावा है तो पेड़ तो लगी, और ओकरे साथ साथ कई लोग भैया ऐसा हवा कि अपन पेड़ के भैया, अब जैसे तो भैया दोरा पर लगावे के कहला, लेकिन हम तो ये कहब जग्गू भैया कि भैया हो ओकर बागवानी लगा दा, जहां भी भैया अपन समझ में आवता कि भैया उ सरवा जमीन या बढ़िया भैया ओमे पैदा ना होत बा, तो भैया ओके में काहे धान गेहूं लगावत हुआ भैया, ओमे आम लगा दा, अमरूद लगा दा, कटहल लगा दा, नींबू लगा दा, ऐसा बेल लगा दा, बैर लगा दा, भैया ओकर बागवानी बना दा कि भैया जितना आप भैया मेहनत करके अन्न उपजाना सकबा ओसे अधिक भैया आपके ऊ जोन
0: भैया तो आपके
1: बा
0: रुपया दे ही और पर्यावरण भी
1: भैया
0: के
1: आम के
0: बढ़िया
1: आम
0: बने
1: और
0: दे रहे
1: गुठली
0: हैं।
1: के दाम जग्गू भैया।
0: और कहा भैया अपने माटी में भैया बैर बड़ा सुख भी मानेला। अब भैया देखा वैज्ञानिक भैया सुझावे ना कि भैया बैर में वो गरीबन का भैया सेव है, जितना कुछ सेव में खनिज पदार्थ पोषण चीज मिलाला कुल चीज बैर में बाय।
1: जग्गू भैया देखें पहले रहल ना कि भैया जब छुट्टी होए ना हो भैया आदमी चढ़ जाए बैर के पेड़े पर 4 बजे, अब भैया भर पेट बैर खा के उतर जाए।
0: तो पहले का आदमी देखा 100 साल जी आंखी का ट्यूर न जाए, अब तो भैया लड़का जन्मत हो वहाँ, अब भैया 10 साल बाद का भैया डॉक्टर भैया कहना भैया आज और कम होता।
1: जोर कम होता तो भैया देखे का ओकर कहबा भैया हो शाम भइल कि भैया चल जइहे बाजारे, आ जोन भैया ठेला पर मिली भैया धूर माटी वाला अर्गर बर्गर पिज्जा कीजा का कहले भैया उ सब कुल अपन खइहे, तो भैया जैसन अपन शरीर के देव भैया शरीर वैसने रही ना।
0: बिल्कुल भैया शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपन अदा करेले, भैया शिक्षित समाज पर्यावरण के बचाई, समाज में भैया जीए का राह दिखाई। भैया कृषि एक विज्ञान है, भैया शिक्षित हुआ तो ये विज्ञान के कृषि के भी जोड़ के आगे बढ़वा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं न कहीं भैया देखा है आपन देश जोन बना जग्गू भैया हरेक फूल के भी

0: तो होबे
1: बिल्कुल
0: करी।
1: बिल्कुल। तो भैया का कुछ हुआ है
0: तो
1: बतावा।
0: देखें जानकारी क्रम में भी देखें शिक्षा ही अल्पसंख्यक के विकास संभव बा। ये अपन तौहीद आलम जी हुआ जो अध्यापक हुआ आ जगत नारायण भैया से अपन जानकारी बा। हम तो कहब न कि बिना कोनो देर के लिए आवा सुन लिया जाए।
1: सुन लिया।
2: सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के दिघुल गांव में हमारी मुलाकात श्री तौहीद आलम जी से हो रही है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे सीधे बातचीत होगी। तौहीद आलम जी, आपको रेडियो कार्यक्रम में स्वागत है, और बताएं क्या क्या हो जा रहा है तौहीद जी इस समय
3: वही बस स्कूल में पढ़ाई लिखाई बघाड़ू विद्यालय में इसमें वर्तमान में पढ़ा रहे हैं।
2: अच्छा, कोचिंग वगैरह कराते हैं।
3: जी जी जी।
2: तो अनेक पढ़ाई लिखाई हुई है, कितना तक पढ़ाई किए हैं आप?
3: हम बीएड किए हैं।
2: अच्छा, तो अच्छी बात है भाई। जो है कि तो पढ़ाई के बारे में तो बड़ा देखा जाता है कि लोग कम ध्यान दे पा रहे हैं गांव में, लेकिन आप बीएड भी कर लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो चूंकि अब बीएड कर चुके हैं तो आपको अच्छा जानकारी होगा, ये प्रधानमंत्री जो अल्पसंख्यक योजना है
3: जी जी,
2: उसके बारे में क्या कुछ जानकारी रखते हैं? कितने योजनाएं उन्होंने चलाया अब तक?
3: हाँ, अल्पसंख्यक द्वारा योजनाएं चलाए गए हैं। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री जो योजनाएं इसके बारे में बताए हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम जो है
2: जी जी,
3: जिसके बारे में हम बता रहे हैं। नंबर पहला है कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। दूसरा नंबर है विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना
2: जी।
3: तीसरा है उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन। चौथा नंबर है मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण। पांचवा अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
2: अच्छा अच्छा।
3: छठवां नंबर जैसे है मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना। अगला नंबर 7 है गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना।
2: अच्छा अच्छा।
3: 8 नंबर है कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। अगला नंबर जैसे है आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता।
2: अच्छा।
3: अगला नंबर जैसे चलाए गए हैं राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। नेक्स्ट 11 नंबर जैसे है ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन यानी गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार।
2: जी जी जी।
3: अगला जैसे 13 नंबर है सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम। सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन। सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया जो 15 बात आपने बता दिया
3: जी जी जी,
2: जो चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक आपने बात कही तकनीकी शिक्षा के बाद
3: जी, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन।
2: चूंकि अब है कि तरह तरह के, आप तो मान लीजिए घर परिवार से जागरूक रहे होंगे, जागरूक आपके घर परिवार से लोग रहे होंगे, तो बीए कराने के बाद आपसे बीएड कराए
3: जी।
2: लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अपने समुदाय में लोग हैं जो कि पढ़ाई करने में असमर्थ हैं,
3: जी
2: आर्थिक तंगी है और ऐसे मतलब है बस्ती की भी, वहाँ की जो है कि लोग उस तरफ रुझान नहीं हो पाती है कि हमको पढ़ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए
3: जी।
2: तो ऐसे लोगों के लिए जो तकनीकी शिक्षा की बात की जा रही
3: जी,
2: है जैसे कौशल विकास योजना
3: जी,
2: तो ये तकनीक शिक्षा क्या है और इसके माध्यम से हम लोग कैसे जो है कि आगे बढ़ सकते हैं?
3: जी हम बता रहे हैं तकनीकी शिक्षा का माध्यम, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में संलग्न है
2: जी जी जी,
3: या दस्तकारी द्वारा अपनी उपजीविका कमाता है, ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और उपजीविका क्षमता बढ़ जाएगी।
2: अच्छा अच्छा। जैसे मतलब कुछ तो अपना कर रहे हैं लोग
3: जी,
2: जैसे कोई जाकर के गाड़ी बनाने लग रहा है, और कोई जो है कि अमुक काम कर रहा है, कोई मछली पालन इत्यादि, चाहे किसी भी प्रकार से सिलाई कढ़ाई बुनाई अक्सर करके देखते हैं कि अल्पसंख्यक लोग जो है कि सिलाई कढ़ाई में लगे रहते हैं। लेकिन अगर उसका जो है कि प्रशिक्षण लेने लो तो उसका अच्छा जो है कि एक अपना फर्म खोल करके वो जो है कि अपना कार्यक्रम चला सकता है,
3: अपना कार्यक्रम चला सकते हैं
2: और उससे जीविका के अच्छा साधन भी हो जाएगा
3: जी।
2: तो और क्या कर सकते हैं उसके माध्यम से?
3: इससे सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
2: अच्छा, जो मतलब ये औद्योगिक प्रशिक्षण, तो औद्योगिक प्रशिक्षण में देखते हैं कि आईटीआई वगैरह भी आता है।
3: हाँ, आईटीआई
2: और तमाम तरह तरह के चीज़ें,
3: आईटीआई है,
2: जिसे आईटीआई कहा गया है,
3: पॉलिटेक्निक वगैरह।
2: हाँ, उसमें जैसे कंप्यूटर शिक्षा भी

0: हो गया और तमाम चीज़ें हैं ऐसे जो उसके माध्यम से भी लोग जो है कि वो जागरूक हो सकते हैं,
1: जी।
0: तो ये चलाए जा रहे हैं। और क्या हो सकता है?
1: और इनके तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का उन्नयन उसी आधार पर किया जाएगा।
0: तो ये मतलब कौशल विकास के माध्यम से बहुत सारे जो है कि उन्नत करने के एक मार्ग खुल जाएगा।
1: जी
0: लेकिन तौहीद जी, एक समान बात अगर हम लोग किया जाए तो आखिर जो है कि जो अल्पसंख्यक लोगों के सामने कौन सा ऐसा परेशानी है जो पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि नहीं ले पाते हैं लोग? क्या वो जो है कि वैसा सोच विचार नहीं कर पाते हैं, या गरीबी है, या जो
1: हाँ
0: भी?
1: हाँ गरीबी के कारण है। और कई लोगों मतलब अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, जैसे अल्पसंख्यक में बहुत पिछड़े हैं वर्ग, अपने खासकर अपने परिवार के लड़कियों लोग को के विद्यालय नहीं भेजकर पढ़ाना चाहते हैं, 10 या 12 तक पढ़ाने के बाद उच्च शिक्षा नहीं देना चाहते हैं कि अब लड़की होकर आगे की पढ़ाई क्या करेगी।
0: जी जी जी जी
1: अधिकतर मतलब अल्पसंख्यक वर्ग में यही रुझान देखने के लिए मिलते हैं, मतलब खासकर
0: अच्छा,
1: लड़कियों को आगे की शिक्षा नहीं देना चाहते
0: नहीं देना
1: हैं।
0: चाहते हैं। और बहुत तो जो है कि शुरुआती हम लगा देते हैं अपना कि जो है कि काम धाम किसी
1: जी
0: तरीके
1: जी
0: करे कि 2 पैसा हमको मिले, हैं। तो इसमें जो है कि जो चूँकि बातचीत बहुत अच्छी हो रही है, तो ऐसे स्थिति में जो अगर बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके यहाँ जो रोजगार के कोई साधन नहीं है, इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो चूँकि अब आगे की पढ़ाई करने के लिए जो अगर 8 तक पढ़ ले या हाई स्कूल पढ़ ले तो फिर तो छात्रवृत्ति भी मिलने लगता है लोगों का।
1: जी
0: अब चूँकि ये 8वीं तक के पढ़ाई की बात की जाए रही,
1: जी
0: तो वहाँ तक तो निःशुल्क शिक्षा है, कपड़ा भी मिलता है, भोजन भी मिलता है दोपहर का, और जो है कि बैग भी मिलेगा, और पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं लगना है।
1: जी
0: तो ऐसे में क्या कहना चाहते हैं कि ये भेजना चाहिए पढ़ने के लिए बच्चों को, कैसे?
1: हाँ, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। जैसे फिर 10 अगर अब 10वीं पास कर ले बच्चे तो उनको अलग कई प्रकार के तकनीकी चीज़ें पढ़ाई होती है, ITI वगैरह है, कई प्रकार से है, तो इससे स्वरोजगार मिल जाता है। कहीं कोई क्षेत्र में अपना जुड़ कर बच्चे अपना रोजगार में जुड़ जाते हैं, उनसे उनका रोजी रोटी चलने लगता है।
0: तो निश्चित रूप से बचपना छीनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जी निश्चित रूप से बातचीत चल रही है, चूंकि गरीबी एक अभिशाप ही है जिसकी
1: जी
0: वजह
1: जी
0: से व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। लेकिन क्या गरीब के लिए भी कुछ ऐसा योजना है जिसके माध्यम से लोग उसका सहयोग ले सकता है और आगे बढ़ सकता है क्या?
1: जी है,
0: जी
1: जो हम बता रहे हैं गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना
0: अच्छा,
1: जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं,
0: हाँ।
1: जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रम के उद्देश्य हैं गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है।
0: अच्छा,
1: इस योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों को कुछ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। अगला जैसे है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SSRY के 2 मुख्य घटक हैं।
0: अच्छा,
1: पहला घटक जैसे है शहरी स्वरोजगार योजना, दूसरी है शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम
0: अच्छा,
1: जिसे UWEP के नाम से जानते हैं।
0: इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्या होता है जैसे?
1: इन कार्यक्रमों के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।
0: अच्छा, और कोई योजना है क्या?
1: हाँ है, जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना
0: अच्छा,
1: और एक टिकाऊ समुदाय व सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करना। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है
0: अच्छा,
1: तथा इन जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है, बचे हुए जिलों में संपूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवंटन का निश्चित प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए
0: अच्छा,
1: कुछ समय तक निर्धारित किया जाएगा, जब तक इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं कर लिया जाता है।
0: जी
1: साथ ही आवंटन का निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा। जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की काफी आबादी है।
0: अच्छा, जहाँ काफी आबादी होगी अल्पसंख्यक समुदाय के, उनके यहाँ तो निश्चित रूप से सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है तोहित जी कि आप पढ़े लिखे होने की वजह से ये सारी योजनाओं के बारे में जान पा रहे हैं
1: जी।
0: हमको लगता है कि इस प्रकार से अगर अन्य लोग भी जागरूक हों, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, तो पहली बात तो जो है कि इसके जानकारी हो जाएगी।
1: हाँ।
0: दूसरी बात में कि इसका लाभ लेने लगेंगे लोग।
1: हाँ, बहुत सारे को लाभ मिलने लगे इससे।
0: हमें तो भाई ये भी अब इच्छा जागृत हो रही है कि कहीं जैसे आप लोग जो भी जानकार हैं, अब देखिए दिखुल के एक आप मिल गए, आपसे बातचीत हो रही है, कुछ अपने समुदाय के लोगों को जो भी गरीब गुरबा के लोग हैं उनको जो है कि जानकारी देना चाहिए कि ये योजनाएं हैं, इसका कहाँ कहाँ हम लोग लाभ ले सकते हैं, कहाँ आवेदन करें, कैसे इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोग को इसका लाभ मिल सकता है।
1: जी जी।
0: तो चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको लगभग पूरे जनपद के लोग, चाहे जहाँ जहाँ तक भी ये नेट चल रहा होगा वहाँ के लोग भी सुन रहे हैं
1: जी,
0: तो चलते चलाते लोगों को क्या आशा रखना चाहेंगे शिक्षा के बारे में, क्या पढ़नी चाहिए लोगों को या आलस त्याग देना चाहिए कि ऐसे ही पढ़े रहना चाहिए?
1: इसके माध्यम से सभी अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी हैं बच्चे पढ़ने जाएं, और पढ़ने जाने के बाद जैसे आठवीं तक की पढ़ाई कर लेंगे, फिर आगे की भी पढ़ाई कर लेंगे, तो उनका आगे की ओर मतलब मार्ग खुल जाएगा और आगे की भी पढ़ाई कर लेंगे और अपना भविष्य खुद सुधार लेंगे और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुधि ब्लॉक के दिघुल गांव से श्री तौहीद आलम जी थे, आपसे बातचीत हो रही थी कि अल्पसंख्यक के 15 सूत्री योजना क्या है और उनके आगे बढ़ने की क्या कुछ विधि व्यवस्था हो सकती है। निश्चित रूप से आपने अनुभव के आधार पर आपने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, और अगर पढ़ाई लिखाई लोग करें तो निश्चित रूप से हर काम के बारे में जानकारी होगी और उस कार्य के अनुकूल लोग काम करेगा। तो इतनी ऐसी जानकारी के लिए तौहीद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जग्गू भैया,
7: भैया
0: भैया देखा ही रहा अपन शिक्षा से ही अल्पसंख्यक के विकास संभव बा। अपन तौहीद आलम जी रहले अध्यापक हैं, ये जानकारी अपन साझा कर ले अपन जगत नारायण भैया से, तो इनका भी दिल जाए धन्यवाद।
7: लेकिन झूठा झूठ न रहा है भैया,
0: तो रामचंद्र दुबे भैया के एगो जोन बा लोक भजन से अपन पंचायती आगे बढ़े।

0: नंदू भैया
1: जग्गू भैया।
0: भैया सबरी राम घरे आए। भैया राम जी सबरी कबेर का बात होले भैया प्रसंग में। भैया पेड़ पौधा प्रकित हमके बहुत कुछ देले हुआ।
1: बिल्कुल
0: अब भैया
1: बिल्कुल
0: हम प्रकित के का देत है, खाली लेते भर है, देत कुछ नहीं है। भैया अब से भी हमन के नैतिक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है कि भैया अगर प्रकृति हमके कुछ देते है तो हमहू प्रकृति के वही तरह कुछ देही। भैया
1: बिल्कुल
0: हमके का देवे के है? भैया पेड़ पौधा लगावे के है, पेड़न के बचावे के है, पेड़न के बढ़ावे के है, पानी भैया जल के रोके का काम करे के बा, ताकि भैया माटी है माटी समसत समसत पेड़न के भैया प्यास भी बुझे, पेड़ आगे बढ़े।
1: एकदम आपकी कहानी सही बा जग्गू भैया। और देखें जहाँ तक अपन पेड़ पालो के तो बात होला तो अपन देखें हर बैठ के पंचायती में होला कि भैया हर खेत के मेड़ बन जाए, हर मेड़ पर भैया पेड़ लग जाए। तो ऐसे देखें कई तरह के अपन सुविधा होला और बहुत से ऐसा अपन किसान भैया लोग हुआ कि भैया हो अपन बाग बागवानी में जो अपन आदमी सोच लेला कि भैया बागवानी आम के हो गई चाहे और कोनो चीज के हो गई, तो भैया सोचल है कि अब ओकरे बीच के जो जमीन बा या नीचे के जमीन बा भैया अब उनमें कुछ ना होई। लेकिन बहुत से ऐसे किसान भैया लोग हुआ जो अपन सहफसली खेती के बात होले हो जग्गू भैया भैया हो अब देखा जहाँ भी छायादार बा तो भैया वो में अब तो अब धान गेहूं तो करबा ना। अब भैया अगर धान गेहूं की खेती भी करत हो तो सही तो हो ही नहीं, कहे से कि भैया ओके धूप भी चाहिए भैया गर्मी भी चाहिए सब कुछ ओके चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसा फसल बात चाहे सूरन के बात कर ला चाहे हल्दी के बात कर ला चाहे अदरक के बात कर ला तो कहीं न कहीं भैया सह फसली खेती करके जोन बा जहाँ पर आप ये समझत होगा कि भैया ये जमीन के भैया केवल एक तरह से एकर इस्तेमाल करल जा सकला पेड़ पालो के ही कर केवल कर देख रेख में कर या जौन भी उसे अपन फलत प्राप्त होके उसे ही कमाई करल जा सकला। लेकिन ना भैया अब तो देखें एक फसल से कई तरह के फसल अब देखें हल्दी के बात कर ला ओमे ओमे देखें आप चाहत भैया चौराई लगा ला आप भैया चाह तो ओमे मेड़ मेड़ पर एक एक ठे अरहर के बीज बो दा भैया उसे ले सकल। मतलब कहे कि बा पहले देखत रहना जग्गू भैया जब भैया अपन धान के रोपाई होके तो भैया हो धान के खेत में लोग मछली पालन कर देवे, एक तरफ हम धान के फसल ले लवे और दूसरे तरफ मछली। तो बहुत सारा ऐसा फसल बा कि भैया हो अपन सह फसली लेकर के अपन माटी के स्वास्थ्य के भी अपन सुरक्षा करल जा सकला और ओकरे साथ मुनाफा भी लिहल जा सकला। काहे से कि जग्गू भैया देखा जौन भी अपन खाद पानी दिहल जाला भैया अपन फसल में कोई झगड़ा जड़ होला भैया कोई मुसला जड़ होला तो भैया जौन अपन माटी के जौन मलाई बा 6 इंच तक भैया हर फसल के जड़ अपन अंतिम तक ना पहुंचेला। लेकिन जग्गू भैया अगर हम परिवर्तन अगर आप करत हैं तो कहीं न कहीं जवन बा अपन माटी में जवन भी पोषक तत्व बा भैया ओकर पूरा पूरा उपयोग भी हुई और माटी ऊसर होए से भी बची।
0: बिल्कुल
1: तो हम तो कहब कि भैया हो सफसली खेती अपन आय के खातिर और माटी के खातिर
0: दोनों
1: दोनों
0: बदले
1: खातिर सही बा,
0: लाभप्रद है भैया।
1: बिल्कुल लाभप्रद बा। और देखें आज जानकारी क्रम में भी हल्दी के खेती के सब फसली अपन खेती के फायदे ही फायदे का बा अपन जोन बा ब्रह्मदेव कुशवाहा भैया जोन प्रगतिशील कृषक हुआ भैया किसान हुआ भैया उनकर आज अनुभव जोन बा अपन मुन्ना भैया के साथे साझा बा तो का कहत हुआ
0: भैया एकदम नेकी और पूछ पूछ भैया सुना लिया।
1: तावा सुनल जाए।
2: किसान भाई जो भी जगह जमीन बा हम लोगों के पास में सिंचाई के सुविधा बा और अपन मेहनत बा हम चाहेला कि वही में हमके पर्याप्त आमदनी हो जाए जैसे कि हम अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकें। कहें कि अपन जोन खेत बा वो बढ़ नहीं रहल बा और हमके आमदनी ज्यादा चाहिए तो प्रयास ही हो रहल बा कि अपन जो लागत बा एक एक कैसे कम कैल जाए। अगर लागत के हम कम करे में सफल हो गए तो निश्चित हमारा आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। खेती तो हम हमेशा से करीला चाहे अनाज वाली फसल हो तरकारी वाली हो पेड़ पौधा बा या फिर कोई भी फलदार वृक्ष पौधा लगावल जाला तो कोशिश ये कैल जाला कि एक समय के बाद उसे हमके आमदनी हुई। लेकिन वही जगह में वही सिंचाई व्यवस्था में वही उर्वरक प्रबंध में अगर हम कुछ ऐसा नया तरकीब लगा सकें, यानी कहे मतलब कि एक साथ अगर हम दो या तीन फसल ले सकें तो निश्चित जोन बाकी हमारा आमदनी बढ़ी, लागत कम हुई। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हुआ घोरावल ब्लॉक के मरसड़ा से ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी। आप हमेशा एक नया नया प्रयोग करत रहलन और उनके प्रयोग सफल भी होला, आज संयोग से आज अपने बीच हुआ। जानल जी उनका का अनुभव बा, ये आगामी आए वाले समय में वो कैसे कैसे अपने खेती बाड़ी के योजना बनौले हुआ, जैसे कि कम जगह में और पानी के भी इनके यहाँ थोड़ा सा कमी रहला, लेकिन फिर भी जो बाकी कुछ न कुछ हल निकाली लेलन। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। आज के दौर के देखते हुए, आज के मौसम के देखते हुए, आपके यहाँ के खास करके जो आबो हवा बा, पानी के अभाव बा, इस सब के देखते हुए कौन ऐसा आपकी तरकीब आप लगाई हैं अपने खेती बाड़ी में कि वही खेती से आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकें, का योजना बा आपके?
3: देखें भैया, बड़ा समसमय के आपके प्रश्न बा। अभी जोन बा जोन समय चलत बा, हल्दी लगावे के समय बहुत बढ़िया चलत बा। हमारे मसाला के रूप में भी हल्दी के उपयोग बा, औषधि के रूप में भी हल्दी के उपयोग बा, अब मार्केट भी बहुत बढ़िया बा। लेकिन हल्दी उगावे खातिर हमके फूली जगह की आवश्यकता नहीं बा, पेड़ के नीचे भी हल्दी के उत्पादन कर जा सकला और बढ़िया उत्पादन ले जा सकला। तो जब इंटरक्रॉपिंग की व्यवस्था हुई, सब फसली खेती की जब व्यवस्था हुई, तो जहाँ जी किसान भाई के यहाँ कोई जरूर नहीं बा कि बाग बगीचा होइबे करे, लेकिन जो किसान भाई चाहत हुए कि हम हल्दी की खेती करी, तो उनके खातिर सह फसली खेती में अरहर, चौराई और आपके मक्का, ये सब लास्ट में यदि अरहर न भेल तो सरसों, ये तीन चार तरह के फसल मिश्रित कर जा सकला। और इनकम सबके यदि जोड़ दिल जाए तो 5-6 लाख रुपया बढ़िया।

0: आराम से एक एकड़ में आपके मिल जाएगी।
1: तो कहे के मतलब कि हल्दी के साथ अरहर चौराई मक्का के जो आप संयोग बतौलें, तो का एक साथ दो या तीन कैसे योजना बनाओ किसान भाई?
0: देखिए भैया, अब सिलसिलेवार तरीका से हम बता देते
1: हैं। हाँ, बिल्कुल।
0: जिसे खेत तैयार करके इस साल में तो एक ही बार खेत तैयार कर जाला
1: जी,
0: क्योंकि एक बार खेत तैयार करके पूरी साल खेती से हमका लाभ लेना बा, वही में फसल पे फसल लगा लेना बा।
1: अच्छा ठीक।
0: तो मान लें अब ही जो बा मई के महीना चलत बा, 15 मई से लेके लास्ट मई तक खेत हम विधिवत यदि तैयार कर लेते हैं, मैं भरपूर कंपोस्ट कोशिश तो रहे कि कंद वाली फसल में कंपोस्ट के जितना से अधिक हो जाए,
1: गोबर वाली खाद।
0: हाँ, गोबर वाली खाद हो जाए। भेड़ मिल जाए तो भेड़ खड़ा कर
1: बैठा दें जी, जी।
0: अब वो भी ना ही मिल पाता है तो वहाँ मुर्गी के खाद मिल जाए, वो भी डाल जा सकला। तो बढ़िया से भरपूर खाद डाल करके खेत तैयार कर ले तैयार। हाँ, एक चीज हम ध्यान दे वाली बात बा, यदि मुर्गी के खाद डालत बन जहाँ
1: जी जी जी
0: और कंपोस्ट डाले बन, तो कोशिश ही करें कि एक सिंचाई करके एकरे बाद जब खेत में ओट आ जाए जुताई करके तब लगावें, और नहीं तो थोड़ा सा वहाँ कंद जो पड़ी नीचे तो मुर्गी के खाद से सड़े के संभावना ज्यादा हो जाला।
1: अच्छा।
0: और इसे कम से कम डिकम्पोज हो जाए, जब पानी डाल जाए तो डिकम्पोज हो जाए तो वहाँ नुकसान ना हुई। तो रहल बात की एक बार जब खेत हम तैयार कर ले, तो खेत तैयार करने के बाद सीधे हल्दी लगावल जला।
1: ठीक।
0: तो हल्दी या तो बेड विधि से लगे या जो है परिया विधि से लगे। तो बेड बना के भी यदि लगत बा तो एक बेड पर दो लाइन और उसके बाद फिर नाली, तो कम से कम एक मीटर में जो बेड बनी तो एक मीटर चौड़ा लगभग हो जाए, तो बीच से दोनों से मिलावल जाए तो दो लाइन सिर्फ हल्दी ऊपर लगी बेड पर और 8 से 9 इंच दूरी पर लगभग 6 से 7 क्विंटल एक एकड़ में बीज लग जाये। अब रहल बात कि एक एकड़ हल्दी यदि लग गई और ढंग से हल्दी पैदा हो गई तो एक एकड़ में हल्दी 150 से 200 क्विंटल तक बड़े आराम से जनबा मिल जाला।
1: कितना दिन के फसल हल्दी?
0: देखे भैया, 6 से 8 महीना के फसल बा हल्दी।
1: 6 से 8 महीना।
0: हाँ, लेकिन जाके जब लेट लगी तब 6 महीना, पहले लगी तो 8 महीना। तो मैच्योर हो के जो मध्य समय बाद सितंबर अक्टूबर
1: उस समय तैयार हो जाए,
0: बस वो टाइम में गर्मी काफी होला, वही टाइम में मैच्योर होला, एक बाद वो पत्ता गिर वो आगे पीछे लगावे से कोई बहुत अंतर नहीं, थोड़ा सा आगे लगे तो उत्पादन अच्छा हुई और थोड़ा सा लेट जैसे जुलाई उलाई में लगी तो उत्पादन कम हुई। और जौन वेरायटी हमारे पास बा सिम पीताम्बर, इसमें लखनऊ के वेरायटी बा, एक उत्पादन 650 क्विंटल पर हेक्टर बा और इसमें करक्यूमिन के मात्रा जो बा 12.5% बा और बाकी जितना हल्दी बन जब से मेघा एक वेरायटी बा मेघा वन 8-9% बा और बाकी जितना हल्दी बन सबके करक्यूमिन के मात्रा जो बा 6%, 5%, 3% ऐसे बा।
1: अच्छा।
0: तो इसमें सबसे ज्यादा ज्यादा करक्यूमिन के मात्रा बा और उत्पादन भी बहुत बढ़िया बा।
1: बढ़िया उत्पादन बा का एकर बाजार में मांग भी बा?
0: बाजार में तो मांग रही भी है, ऐसे कैंसर के औषधि तैयार होत बा
1: हल्दी से जी। हाँ, जी,
0: तो अब एकर तेल भी निकालल जा सकला,
1: तो किसान भाई एकर व्यवसायिक खेती कर सकेले।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम तो कहते हैं कि एक एकड़ से 5-6 लाख रुपए बड़े आराम से किसान निकाल सकत बन हल्दी। हल्दी
1: केवल हल्दी से?
0: हल्दी से।
1: अच्छा।
0: अब एकरे आगे यदि किसान भाई निकालल चाहे तो हल्दी लगोले के बाद सीधे जोनबा यदि पानी हुए उनके पास तो चौराई एक एकड़ में खाली 1 किलो बीज चौराई के 1 किलो बीज 1,000 रुपए के लगभग के मिल जाए मार्केट में और सीधा खेत में छीट करके सिंचाई कर दें। और जब सिंचाई कर दी है तो धीरे धीरे जम जाए, जमले के बाद जौन बा 35 दिन के बाद वो कटे लायक हो जाए। तो एक कटाई ऊपर से करके पहले निकाल दें और 15-20 दिन के बाद फिर दूसर की कटाई हो जाए। तो कम से कम एक एकड़ में 60 से 65 क्विंटल चौराई मिल जाए किसान भाई के, और कितनों रेट कम मिली तो 20 रुपया किलो से रेट नीचे कबो नहीं जाते। तो लगभग 1.25 लाख रुपया के तो जनबा आपके चौराई से मिल सकला।
1: चौराई कितने दिन में खत्म हो जाए?
0: 50 दिन 55 दिन में चौराई खत्म हो जाए। हल्दी जमे में भी समय आपके लगभग 30-35 दिन लग
1: जाए
0: और तब तक जमत रहो में खेत भी साफ हो जाए और वो भी हो जाए। अब रहल बात की वही में साथ में अरहर लगा दिल जाए।
1: कब लगी
0: अरहर? आप जिसे निकाल के चाहे कि चौराई निकाल के लगी।
1: अच्छा।
0: लगावे तब भी लग जाये।
1: हाँ।
0: और नहीं तो साथे भी लगा जा सकला, कोई दिक्कत नहीं बा, क्योंकि बेड बनल बा तो बेड पर एक मीटर के बेड बा तो हर बेड पर नहीं अरहर लगाना बा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: अरहर एक बेड बीच में छोड़ करके दूसर के बेड पर लगाना बा।
1: हाँ।
0: यानी एक एकड़ में 700-800 बीज होए के चाहिए मात्र, मतलब एक एक लट्ठा पर एक एक पौधा होए। अब यदि 800 पौधा पर एकड़ बा तो यदि ढंग के अरहर थोड़ा सा दवा और कटाई छटाई होकर कर ले गई लन तो हमारे दवा बा के 10 से 12 क्विंटल पर एकड़
1: वहाँ से भी मिल जाए,
0: अरहर मिल जाए।
1: बड़ा अच्छा आपकी तरकीब।
0: तो यदि 10 से 12 क्विंटल मिले 1.25 लाख रुपए वहाँ भी मिल गई, 1.25 लाख रुपए चौराई से मिल गई, तो 2 से 2.5 लाख रुपया अतिरिक्त आप ले सकत बन। अब पूरी के पूरी हल्दी अभी आपके
1: बचल बा।
0: अब हल्दी से जब सोचिए कि हल्दी हमारे कितना मिली, हम कहते 150 क्विंटल भी एकड़ मिलल, ज्यादा मत मिले तो 150 क्विंटल भी यदि मिल गए, कितनों कच्चा हल्दी भी हम बेचा तो 25 रुपए से नीचे तो ना बिकी।
1: कुशवाहा जी, हल्दी में खास करके अपने इलाके के जो वातावरण देखते हुए कौन कौन परेशानी आ सके?
0: हल्दी में भैया कोई रोग नहीं लगत,
1: कोई रोग नहीं लगत।
0: थोड़ा सा हमें होला का के कभी कभी डायबिटिक की स्थिति आवल, थोड़ा सा पत्ता होता झुलसे लगला, एक आध चक्करों में हल्का कोई फफूंद नाशक डाल जाए और कोई विशेष जो तो सिर्फ सल्फर डाल जाला और कोई डाले की जरूरत नहीं बा।
1: यानी कहे कि मतलब कि कोई रोग या कीट पतंगा के भी ज्यादा प्रकोप नहीं बाए में और अच्छा उत्पादन ऐसे लिहल जा सकेला। और एक साथ साथ आप बतौलेंगे चौराई बा, अरहर बा, ये सब के भी अगर उन्हें शामिल कर ली है तो एक अतिरिक्त आमदनी हो जाए अपने किसान भाई लोगन के। बिल्कुल आप सही कह लें, बाजार के खातिर आप का कहे चाहिए? हल्दी के बाजार अपने इलाके में बढ़िया बा?
0: या वही तो अभी तक चर्चा हम थोड़ा सा छेड़े रहले कि यदि 25 रुपया 30 रुपया किलो कच्ची हल्दी उनकर बिक जात बा
1: जी,
0: तो 3 से 5 लाख रुपया के तो पर एकड़ आपके जोन बा हल्दी हो गई। अब धान गेहूं से तो सस्ता ना बिकी, अब पका दी है जब किसान भाई तो 150 से 200 रुपया का रेट बा मार्केट में,
1: बढ़िया ढंग से अगर बना करके भेजल जाए बढ़िया।
0: हाँ, तो 200 रुपया किलो बिक जाये। और यदि किसान भाई थोड़ा सा और चाहत बन के हम ज्यादा एहू से ज्यादा इनकम ले तो पाउडर बनावे एक FSI ले लें और सीधे पैक करके मार्केट में उतार दें, 400 रुपए केजी आराम से बिक जाए। तो अब जब 400 रुपए केजी बिकी तो उनका 7 से 8 लाख रुपए के एकड़ अर्निंग हो गई।
1: देखें किसान भाई, अपने इलाके के जो आबोहवा बा हल्दी के खेती के खातिर अनुकूल बा, और कुशवाहा जी सिंचाई उचाई के का मांगे?
0: देखें भैया, हल्दी में बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़त। अब जैसे चौराई ले ली है बन तो पहला पानी दे दी है तो 15 दिन लगोले के बाद पहला पानी जहाँ दिलन 15 दिन तो नमी थम जाए चूंकि चौराई जामत रही तब तक। दूसर का पानी फिर दे दिलन तो 8 दिन के बाद फिर पानी चाहिए, 3-4 पानी देवे में चौराई भी निकल जाये और हल्दी भी हमारे ग्रोथ करत रही। पानी आवश्यकता तब पड़क जैसे अक्टूबर में या सितंबर में बारिश ना भइल, वो परिस्थिति में पानी देवे के पड़ी चूंकि बल्ब उस टाइम में बनल उत्पादन वहीं से प्रभावित हुई।
1: शुरू में कहले कि गोबर आधारित खाद या कंपोस्ट वाली खाद डालें, का कोई और उर्वरक भी देवे के पड़ी?
0: देखें भैया, यदि भरपूर आपके पास कंपोस्ट बा तो कोई खाद देवे की जरूरत नहीं बा,
1: उतना शुरू में जो दे दी है तो पर्याप्त,
0: बिल्कुल पर्याप्त हो जाए। हमारे जितने अभी तक हल्दी भइल चाहे जोन खेती कर टोटल हमारा ऑर्गेनिक पर धीरे धीरे हो चल रहा है, इतना भेड़ और इतना कंपोस्ट के इस्तेमाल हम कर चुके, अब समस्या हमारे बदी नहीं बा।
1: तो अगर किसान भाई जैविक उर्वरक यानी कि मतलब कि भेड़ बैठा दें या गोबर आधारित खाद डाल दें या कंपोस्ट वाली खाद डाल दें तो उसे पर्याप्त उत्पादन
0: मिल जाए,
1: कोई उत्पादन पे असर नहीं?
0: बिल्कुल उत्पादन पर असर नहीं भैया ये
1: जी कहे नहीं। और देखें, अब तो समय आ गए है अपने किसान भाई, हालांकि सजग भी हो गए हुआ, अपनी खेती के एक व्यवसायिक रूप भी दे दे हुआ और कोशिश ये करेलन की उन्नत किस्म के बीज के इस्तेमाल करें, सही समय के चुनाव करें और अच्छे बाजार में भेजे के भी प्रयास करें। इस सब बात पे अपने किसान भाई अमल करे लगल हुआ, कहे कि अब आज के जो व्यवसायिक खेती बा इस सब मांग रहल बा कि हमके करे के पड़ी। तो चलत चलाओ तो और अपने इलाके के किसान भाई लोगन के खास करके हल्दी के खेती के बारे में और कुछ बचल खुचल सलाह बा तो दे दें।
0: हम तो ये कह कि किसान भाई के हल्दी करे के चाहिए, ये बदी करे के चाहिए कि अपने यदि निरोग रहना बा तो हल्दी के इस्तेमाल करना बा, और जब भी अपने पैदा करें तो ऑर्गेनिक रही
1: जी
0: तो उससे ज्यादा फायदा मिले उनके
1: जी, अपने उपयोग में भी आई स्वस्थ रही है निरोग।
0: हम कि यदि कुछ ऐसा मर्ज बा जिससे कुछ लोगों के देखा तो है कि पीछे का पर्सन पूरा अकड़ जाला, पूरे शरीर में दर्द बन रहा, वहाँ कच्ची हल्दी ज्यादा नहीं सेम के बीज के बराबर सिर्फ कच्चा हल्दी खाए शुरू कर दें, हमारा दावा बा कि 35 से 40 दिन में उनकर पूरी के पूरी बॉडी एकदम दर्द से राहत मिल जाए।
1: जी, बिल्कुल हल्दी के तो बहुत ही औषधीय गुण बा और एक इस्तेमाल भी कइल जाला कई तरह के दवाई बनावे में। तो किसान भाई देखें, आज अपने साथ रहना घोराल ब्लॉक के मरसड़ा से ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, हम लोग जानल गए इनके हल्दी की खेती के बारे में और साथ ही साथ हल्दी के साथ साथ और काका लिहल जा सकला, चौराई बा, अरहर बा, एक अतिरिक्त आमदनी के रूप में लिहल जा सकला, अपने आय के बढ़ावे के खातिर सौ फसली खेती कइल जा सकला और खास करके हल्दी से भी अच्छा मुनाफा लिहल जा सकला। तो उम्मीद बा कि आज के बातचीत से अपने किसान भाई जरूर से जरूर योजना बनी है और जो समय चल रहा बा एक सदुपयोग करके अपने हल्दी के खेती में आगे बढ़िए। तो ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, आज आप अपने किसान वाणी के माध्यम से किसान भाई लोन की इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक खातिर आपके बहुत बहुत
0: धन्यवाद भैया।
2: जग्गू भैया।

0: भैया देखा ये अपन हल्दी के साथ साथ सफतली खेती के कितना बढ़िया फायदा बतौले अपन ब्रह्मदेव कुशवाहा भैया चौन अपन मुन्ना भैया के साथे जानकारी साझा रहल। और कहीं न कहीं भैया हर किसान भैया लोगन के अपन जोन भी सफसली खेती बा ओकर जरूर से जरूर अपन आगे बढ़ावें और वो पुरान अनुभव भी देखें पहले रहल कि भैया एक साथे कई तरह के अपन अनाज जब बोवल जात रहे और अगर यही जानल जात रहे कि भैया अगर एक अनाज कहीं अगर झुकल तो दूसर का भी ओकर भरपाई करी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब बात खेती किसानी के होले भैया, तो कहल जाला एक आख खेते पर तो दूसर आख
0: बाजार पर
1: बाजार
0: भैया
1: में। तो भैया
0: आज
1: बाजार
0: भैया
1: का क्या हाल चाल भाई, कहाँ कहाँ भैया?
0: दूसर आंख देखें आज मधुपुर में बा और मधुपुर में पूर्णवासी चौहान भी आज बाजार भाव भेजले हुए आई कुंतल में बा। और देखें अपन ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भी अपन चौराई के बात करत रहे तो हम तक अब क्या चौराई से ही शुरू करत थे बाजार
1: बिल्कुल
0: भाव।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: चौराई देखें इस समय 1500 रुपया कुंतल बा, खीरा 1800, आलू सफेद वाला 800 और लाल वाला 1000, टमाटर 800, प्याज 1300, मूली 1500, गाजर 1600, चुकंदर 2200, करेला रहल भैया 1500, भिंडी रहल 1200, लौकी 1800, पालक 1500, कटहल 2000 रहल, परवल 7000 रहल, कुंदरू 2500 रहल, अब बोरा 1500, अब बैगन रहल भैया गोल वाला 3000, लंबा वाला 1500, सूरन रहल 3500, अदरक रहल 8000, धनिया रहल 4000, मरचा रहल 3000, अब कोहड़ी रहल 300, अब यह फूल गोभी रहल अपन 1500 रुपया सैकड़ा, पत्ता वाला रहल 1800 रुपया सैकड़ा, आ ककड़ी रहल 1500 रुपया कुंतल, आ खरबूजा रहल 1600 रुपया कुंतल, तरबूज रहल 1200 रुपया कुंतल और चलत चलावत भैया नींबू रहल 400 रुपया सैकड़ा।
1: बा भैया ये रहल
0: ई
1: हा
0: रहल अपन आज के मधुपुर के ताजा मंडी बाजार भाव कुछ
1: भैया,
0: कुंतल में
1: पाती के
0: रहल।
1: माध्यम से थाती भैया भेजना, हमेशा भेजत रहना, हम अपने कार्यक्रम में शामिल के लिए जा भैया के देवल जा, धन्यवाद। लेकिन झूरे झूर नहीं भैया,
0: तो आवे रामचंद्र दुबे भैया के एगो माटी गीत से अपन पंचेती आगे बढ़े,
1: बढ़े
0: धन्यवाद दिहल जाए।

0: जग्गू भैया,
1: भैया हो ही मटिया जिंदगानी
0: गुड़
1: भैया।
0: खानी भैया की मतलब समझ ल कि कितना एमे अपन भैया सब कुछ राज छिपल बा, कितना गुड़ बा मिट्टी में। आ लेकिन हम कहब जग्गू भैया कि भैया यह समय आज मतलब इस समय चल रहा बा कि खेत खाली बा भैया, और माटी में अपन का गुण बा एकर भी भैया देखें जांच करावे के एकदम उपयुक्त समय बा।
1: बिल्कुल
0: काहे से कि भैया देखें जब अपन खेती हो जाला तो भैया जब ओमे कौनो समस्या दिखे लगला जग्गू भैया तब समझ में आवे लगला कि भैया अगर आज हम माटी
1: कौने
0: के
1: चीज का, कौने पोषक तत्वन का,
0: बिल्कुल
1: कौने चीज का भैया कमी है।
0: कमी बा या हमार फसल खराब होत बा या कौने चीज के भैया अधिकता बा तब भी हम देवत है, तब भैया कहल जाला ना भैया आंख मूंद के भैया खेला खेले वाला। तो भैया भैया आंख मूंद के खेला ना खेलल जाए माटी के साथ, भैया आंख खोल के खेला खेलल जाए। और आंख खोले के यही उपयुक्त समय बा कि जब अपन खेत खाली बा तो भैया माटी के जांच करा लिहल जाए, और जहां तक संभव बा भैया गर्मी के जुटाई भी अगर आपके पास अगर कर दिहल जाए तो कहल जाला ना कि 100 रोगन की एक दवाई भैया गर्मी के जुटाई, भैया माटी सुना जाई जौन भी कीड़ा मकोड़ा हो वहां निकारक भैया उमर जी हैं। भैया माटी जोन बा भुरभुरा जब पानी पाई तो भुरभुरा हो जाई, जल धारण के क्षमता बढ़ जाई,
1: बिल्कुल
0: तो कहीं न कहीं भैया ये उपयुक्त समय बा एकर उपयोग करल जाए इस्तेमाल करल जाए। और जग्गू भैया
1: क्या
0: हम तो
1: भैया।
0: आपके एक बात और निहोरा करब जगाई हो कि भैया हो देखा जवन अपन मुंह फुलैले रहला जग्गू भैया, भैया ये देखा मुंह फुलाई बंद करा। काहे से कि भैया जग्गू भैया ये देखा तंबाकू सेवन जोन बाना ये जीवन खातिर बड़ा घातक बा जग्गू भैया। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे हम
1: बिल्कुल
0: सब पंच भैया लोगन के कहब कि भैया हो देखा नशा नाश के जड़ है भाई एकर अंत बड़ा दुखदाई। भैया कम समय के लिए भैया जब अपन सेवन होला तब तक भैया आनंदित होला, लेकिन भैया जब कहीं कहीं कोई पंच भैया लोगन के कर जब प्रभाव दिख जाला या शरीर पर प्रभाव पड़ जाला तब भैया घर परिवार समेत भैया परेशानी में आ जाला।
1: बिल्कुल बात सही कहला भैया, नशा नाश के तरफ ले जाला। और भैया हम मानव जीवन पोगले, हमके कुछ बनाए के है, बनावे के है, ना नाशे के है, ना नसवावे के है।
0: बिल्कुल। और जग्गू भैया देखें जिम्मेदारी जोन होला ना कहल जाला ना कि भैया अगर एक गार्जियन जोन घर के होला भैया जिम्मेदार व्यक्ति जोन होला वो एक भैया धुरी के ऊपर धुरी के तरह होला, जिसे भैया चक्का चलला ना कुम्हार के भैया उ तरह से घूमे ले भैया ऊपर तरह तरह के बर्तन या परिवार फलल आ फूलल आ। तो भैया वो तरह से अपन अभिभावक गार्जियन हो लें तो भैया वो अपन पूरे परिवार के जिम्मेदारी समझें, नशा से दूर रहें, आ अपने साथ साथ भैया अपने समाज के भी भैया ये जागरूक करें और जिम्मेदारी करें। काहे ऐसे कि देखें परहित सरस धर्म नहीं दूजा, भैया अगर आपके अगर कहला से भैया अगर और 4 लोग भी अगर छोड़ देते हुआ उनकर, अब देखा कोई जब भैया दारू शराब पी के घर में रोज अपन उपद्रव करता अब भी अगर कोई छोड़वा देना तो भैया वो गार्जियन भैया जो कर घर वाला जितना लोग रहले भैया कहिए कि भैया आपे भगवान हवा।
1: सबसे बड़ी चीज ये है ना भैया, देखा अपने अंचल में शिक्षा का भी अभी कुछ कमी है, अंधभक्ति भी, अंधविश्वास भी बा। तो जब आदमी के भैया स्वतः चेतना होले, शिक्षित आदमी शिक्षा के तरफ बढ़ाए ना, शिक्षित रहे, कभी कभी तो यो हो कि भैया बेरोजगारी की स्थिति में भी भैया लोग नशा पतई करत हुआ, भैया रोजगार भी होवे के चाहिए,
0: तो जग्गू भैया देखें कहल जा
1: लेकिन नशा ओकर विकल्प नहीं है।
0: तो जग्गू भैया देखा कहल जाला ना कि भैया एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा, भैया एक तो आप बेरोजगार हवा अब भैया दूसर और जोन बा बेरोजगार होए के भैया जोन पटरी पर आपके चले के बा वो पटरी से भी आप दूर हो जाई हैं। तो कहीं न कहीं नशा भैया ओकर सिर्फ नाश बा, ओसे भैया देखें हर चीज के एक लिमिट होला या हर चीज के एक दवा होला भैया दवा के रूप में होला। अब देखें शराबे होला ना भैया बढ़िया बढ़िया टॉनिक में भैया ओकर मात्रा देखे के मिलला, हर दवाई में कुछ न कुछ दवाई में देखे के मिलला। तो भैया ओकर देखें मात्रा बात तो दवाई न बा भैया, लेकिन भैया मार के एक बोतल भैया उलट जीवा नाली में तो घर परिवार कैसे चली। तो कहीं न कहीं भैया इस चर्चा के साथ अब आप देखा पंचायती समिति के बकत हो रहा बा, तो का कहत हो चलल जाए,
1: चलो चलो
0: तो सब पंचन के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की गाई इस गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल क्या करे से। गीत आनंद बख्शी का, संगीत जतिन ललित का।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: श्रोताओं, भीषण गर्मी और नौतपा का प्रकोप जारी है। गर्मी से बचाव के लिए आप जरूरी सावधानियां रखें। पहला, हाइड्रेट रहें, प्यास न होने पर भी बार बार पानी पिए। नींबू पानी या ORS का घोल शरीर में पानी और नमक की कमी पूरा करने के लिए काफी होता है, और अगर छाछ हो तो और भी अच्छा। धूप से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर के अंदर ही रहें। यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो अपना सिर और चेहरा सूती कपड़े से ढकें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा और ककड़ी खाएं। बासी खाना खाने से बचें। अपने घर की छत या बालकनी में पानी और दाना अवश्य रखें पशु पक्षियों का, तो हीट वेव से आप बचे। अपनी सुरक्षा का स्वयं ख्याल रखें।
3: जानम मेरे जानम, जानम।
1: आकाशवाणी उम्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गीत। आवाजें एक बार फिर उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे मिस्टर बेचारा में उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीत लिखा था समीर ने, संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने।
1: JKLM NOPQRSTUVWXYZ

मिताली शशांक के लिखे गीत को अभी आप सुन रहे थे। ए हरिहरन हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन, उदित नारायण और सैफ अली खां की आवाजों में फिल्म थी हम साथ साथ हैं। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं।

आइए आपको जानकारी दे दी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर रिले किया जाएगा चर्चा का विषय है कानून की बात। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। यादों की झरोखों से सफर 90 वर्ष का, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात 10 बजे शमा रोशन होगी कार्यक्रम रसधारा से। और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, क्षमा कीजिएगा आपकी बात का समय रहेगा रात्रि 10:30 का। तो ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, भीषण लू और नौतपा के प्रकोप जारी हैं और इनसे बचने के लिए आप कुछ सावधानियां जरूर एहतियात करें। हाइड्रेट रहें, प्यास न होने पर भी बार बार पानी पिएं। ORS और नींबू पानी का सेवन जरूर करें। शरीर में पानी और नमक की कमी पूरा करने के लिए नींबू पानी, छाछ या ORS का सेवन जरूर करें।

जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। धूप से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर के अंदर ही रहें। यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो अपना सिर और चेहरा सूती कपड़े से ढकें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े ही पहने। मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा और ककड़ी खाएं। बासी खाना खाने से बचें और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। अपने घर की छत या बालकनी में पानी और दाना अवश्य रखें। यह आकाशवाणी का उबरा केंद्र है, कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

0: में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
5: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
6: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
7: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
8: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
9: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं डीपीडीपी एक्ट के विषय में। जानकारी दे रहे हैं स्पंदन श्रीवास्तव और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि इंटरनेट का युग है और जो संस्था या जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करता है वो किंग है। इसके दुरुपयोग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक एक्ट बनाया गया 2023 में, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसी विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है स्पंदन श्रीवास्तव को। स्पंदन श्रीवास्तव जो कि हाईकोर्ट लखनऊ में एक अधिवक्ता हैं। तो स्पंदन जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि ये एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी?
3: आधार एक्ट आने के बाद से काफी प्रचलन में ये बात थी कि जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो निजता का अधिकार, वो एक मौलिक अधिकार है या नहीं। रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति के एक साधारण जीवन जीने के लिए आवश्यक है उसकी निजता बनी रहे। पहले के समय में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी होती थी, उसका नाम, वो किस पते पर रहता है, या ज्यादा से ज्यादा उसका फोन नंबर। पर आज के समय में, इंटरनेट की एज में, हमारी पर्सनल जानकारी, डिटेल्स इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। लोग कभी खुद कुछ पोस्ट करते हैं, हम कोई अकाउंट बनाते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ हम सामान खरीदते हैं, तो हम क्या खरीद रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी इन कंपनियों द्वारा इकट्ठा की जाती है।
2: या इवन हम इंटरनेट पर कुछ भी चीज सर्च करते हैं, खोजते हैं,
3: हाँ,
2: तो वो भी जानकारी उनके पास
3: वो भी जानकारी उनके पास होती है। और ये जानकारी आज के समय में, इसको नया क्रूड ऑयल कहा गया है
2: जी।
3: वैश्विक स्तर पर जिस तरह पहले क्रूड ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट सामान माना जाता था क्योंकि ऊर्जा के लिए क्रूड ऑयल बहुत जरूरी था, उसी प्रकार आज के समय में डेटा उतना वैल्यूबल है। ये कंपनियां डेटा इकट्ठा करती हैं, उसे बेचती हैं, और उस बेचने से सर्विसेज इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, एडवर्टाइजिंग। कंपनियां, कोई व्यक्ति क्या सामान खरीदना चाहता है, क्या देखता है, इसके हिसाब से उसे किस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, उसको बनाया जा सकता है। इसका दुरुपयोग इस रूप में हो सकता है, पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, या आपके नाम कोई व्यक्ति लोन ले सकता है।
2: तो सस्पंदन जी, इसके इस एक्ट की सुरक्षा ना हो तो बहुत से खतरे हैं आम आदमी के
3: जी।
2: तो एक्ट क्या कहता है?
3: डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसी व्यक्तिगत जानकारी को जो हम किसी कंपनी को या बल्कि सरकार को भी जो हम अपनी जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी को सुरक्षित रखने का दायित्व डालता है।
2: अच्छा,
3: ये एक्ट ये कहता है कोई भी कंपनी जिसे कि डेटा फिड्यूशरी का नाम दिया है एक्ट ने,
2: अच्छा,
3: ये वो कंपनियां या सरकार जो कंज्यूमर से या पब्लिक से डेटा कलेक्ट कर रही हैं, इनके ऊपर ये कर्तव्य लगाता है कि जब ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं तो इनका दायित्व बनता है कि इस डेटा को सुरक्षित रखेंगे और बिना अनुमति के इस डेटा को किसी को बेचेंगे नहीं,
2: ये शेयर नहीं करेंगे,
3: शेयर नहीं करेंगे
2: जिससे कि उसका दुरुपयोग हो सकता है,
3: उसको सुरक्षित रखेंगे ताकि कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका दुरुपयोग ना कर सके। फिड्यूशरी वो कंपनियां हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करती हैं, जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी साधारण व्यक्ति जो कंज्यूमर्स हैं, उन्हें डेटा प्रिंसिपल का नाम दिया है। जैसे मैं व्यक्ति हूं जो ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैंने अपना अकाउंट बनाया,
2: अच्छा
3: उस पे मैंने अपना नाम पता जिस जगह पर सामान डिलीवर होना है वो पता दिया, अपना फोन नंबर दिया, फिर मैं कौन सा सामान खरीद रहा हूँ किस समय पर, वो सारी चीजें डेटा है
2: अच्छा,
3: जो उस कंपनी के पास
2: पहुंच गई
3: जी। अब कंपनी के लिए ये जरूरी भी है कुछ स्तर पर, क्योंकि उसके बिना वो अपनी सर्विसेज दे नहीं सकते।
2: तो इस पंडित जी, इसमें डाटा प्रिंसिपल जो आपने कहा, जो कंज्यूमर है
3: जी,
2: उसके कुछ अधिकार होंगे
3: जी। डेटा प्रिंसिपल को अधिकार दिए गए हैं कि सबसे पहली चीज कि मुझे जानने का अधिकार है कि मेरा कौन सा डेटा लिया गया है
2: जी।
3: मैंने अपने फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करी और उसने मुझसे कंसेंट मांगी कि मैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो कहा जाता है उससे अग्री करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अब
2: अच्छा।
3: लोग साधारणता उसको पढ़ते नहीं हैं और उस पे
2: ओके
3: सिर्फ
2: कर
3: ओके
2: देते
3: कर देते हैं। उस कंसेंट में कंपनियाँ ये कंसेंट लेती हैं कि वो हमारा डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, उसके उसे प्रोसेस करेंगी और प्रोसेस करके वो उसे बेच भी सकती हैं
2: अच्छा
3: दूसरी कंपनियों को, जिससे कि हमें क्या एडवर्टाइजमेंट दिखना है या सोशल मीडिया वेबसाइट पर हमें क्या दिख रहा है वो चीज़ें बनाई जाती हैं।
2: अच्छा, तो इसमें कंज्यूमर को, डाटा प्रिंसिपल को क्या अधिकार दिए गए?
3: पहला अधिकार ये है, हमें जानने का अधिकार है कि हम जब कंसेंट दे रहे हैं तो
2: अच्छा।
3: किस चीज के लिए हम ओके कर रहे हैं, हमारी कौन सी जानकारी इस कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा इकट्ठा की जाएगी।
2: अच्छा, हो सकता है कि जरूरत नहीं हो, उससे ज्यादा जानकारी ले ले कंपनी।
3: जी, तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो माइक्रोफोन का या कैमरे का एक्सेस मांगती हैं जिसकी जरूरत नहीं होती।

0: वो ज़रूरत से ज़्यादा डेटा लेने की कोशिश कर रही हैं, उस चीज़ को ये अधिनियम रोकता है।
1: और अधिकार क्या है?
0: डेटा प्रिंसिपल यानी कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो किसी भी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकता है कि हमारा कौन सा डेटा लिया गया है, और उस संस्था को, उस कंपनी को ये जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा अधिकार ये है कि हम अपनी जानकारी, जो भी हमारी कलेक्ट की गई है, हमारा डेटा कलेक्ट किया गया है, उसे सुधारने या मिटाने का अधिकार है। हमारी कोई जानकारी गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए कह सकते हैं, या हम कोई जानकारी नहीं देना चाहते तो उसे मिटाने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
1: अधिकार है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं?
0: हमारा अधिकार है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: ये रिक्वेस्ट का अधिकार की क्यों बात है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार एक कंडीशन लगाती है, जैसे कि बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो कुछ समय तक बैंक को अपने पास रखने ही होते हैं, या कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो कंपनियों पर ये कंडीशन लगाते हैं कि उन्हें उस डेटा को कुछ समय तक रखना होगा अपने पास। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो कंपनी किसी और अधिनियम से भी बाध्य है तो वो डेटा हटा नहीं सकती जब तक सरकार उसकी अनुमति नहीं देती।
1: जैसे किसी कंज्यूमर का या डाटा प्रिंसिपल का जो पैन नंबर है वो किसी बैंकिंग के लिए जरूरत होगी,
0: जी
1: तो उसको आपको नहीं
0: जी
1: हटा
0: जी
1: सकते।
0: जी इसी तरह
1: ये तो इसमें और कुछ अधिकार हैं?
0: तीसरा अधिकार है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो कोई भी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक शिकायत निवारण का सिस्टम बनाएगी, जिसमें व्यक्ति सीधे कंपनी को अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और कंपनी अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करेगी।
1: तो स्पंदन जी, आपने ये तो बता दिया कि डाटा प्रिंसिपल के क्या अधिकार हैं। तो इस एक्ट के हिसाब से जो कंपनीज हैं उनके भी कुछ ड्यूटीज होंगी, उनके कुछ कर्तव्य हैं?
0: जी, उनके ऊपर भी कर्तव्य, कुछ दायित्व लगाए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला कि सुरक्षा उपाय का, कि जब भी वो कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगी किसी भी साधारण व्यक्ति का, जनता का, तो उनका प्रथम कर्तव्य है कि वो उस डेटा को सुरक्षित रखें, क्योंकि जैसे मैंने बात की, हैकर्स होते हैं जो कि इस डेटा को लेने की कोशिश करते हैं दुरुपयोग करने के लिए, तो वो हैक ना कर पाए सिस्टम में। जहाँ भी डेटा को स्टोर करके डिजिटल फॉर्म में रखा गया है वो जगहें सुरक्षित रहें, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुरुपयोग करने के मंशा से,
1: उनका मिसयूज ना कर सके।
0: जी,
1: और कर्तव्य कोई?
0: दूसरा है कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसका उल्लंघन होता है, हैक हो जाता है, जिसमें कि व्यक्तिगत जानकारी लोगों की लीक हो जाती है, तो सबसे पहले उन व्यक्तियों को अवगत कराना होगा, कंपनियों को, कि
1: अच्छा
0: आपका
1: अच्छा
0: डेटा लीक हुआ है, ताकि वो अपने स्तर पर अपने डेटा को, अपने अपने आप को सुरक्षित कर पाएं। दूसरी चीज़ है कि उन्हें एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा इस अधिनियम में ही।
1: अच्छा
0: उस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी ये जानकारी देनी होगी ऐसा कोई उल्लंघन हुआ है। ग्रीवेंस सेल बनाने का दायित्व कंपनियों पर ही है।
1: नहीं तो उसमें किसी को नौकरी देंगे या अपॉइंट
0: जी
1: करेंगे?
0: जी जी जी वहाँ पर ट्रेंड पर्संस होंगे जो कि लोगों की शिकायत सुनेंगे और उस शिकायत का निवारण करने की कोशिश करेंगे। अगर लोग उस निवारण से नाखुश हैं तो वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास
1: जा
0: अपील
1: सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं। जी
1: तो इसका कुछ समय है? मान लीजिए किसी को ग्रीवेंस है तो वो कंपनियों को कितना समय दिया गया है उसका निदान
0: जी
1: करने के लिए?
0: कंपनियों को जो अभी नियम आए हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए, उसमें कंपनियों के ऊपर, कंपनियों को 24 से 72 घंटों के बीच में उस शिकायत को दर्ज करना होता है। उस शिकायत के लिए टिकट नंबर बना करके डेटा प्रिंसिपल यानी जो कंज्यूमर है उसे देना होता है। ऐसी परिस्थिति है जिसमें निवारण नहीं हो पा रहा है तो कुछ समय बढ़ाया जा सकता है, वो शिकायत पर निर्भर करता है कि वो कितना समय बढ़ाया जाएगा।
1: अच्छा, किसी कंज्यूमर को कई 15 दिन, 20 दिन, महीना बीतने के बाद भी उस ग्रीवेंस का कोई निदान नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकता है?
0: जी, वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
1: तो इसमें कुछ दंड का प्रावधान भी किया गया है?
0: जी, अगर कंपनी उचित सुरक्षा उपाय नहीं लेती है तो उस पर अधिकतम 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सूचना बोर्ड ने कोई आदेश दिया है और डेटा प्रिंसिपल के किसी डेटा प्रिंसिपल के यानी उपभोक्ता के किसी डेटा का उल्लंघन हुआ है तो 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: अच्छा
0: बच्चों के डेटा को खासकर संवेदनशील माना जाता है
1: अच्छा
0: कि बच्चों के डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चों के डेटा का दुरुपयोग होता है या उल्लंघन होता है तो उस मामले में 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: तो भी आपने बच्चों की बात बताई, तो क्या महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से है?
0: महिलाओं और पुरुषों के डेटा को इस अधिनियम में बराबर रखा गया है। खासकर अगर कोई महिलाओं के विरुद्ध कोई क्राइम होता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता या आईटी एक्ट, जो कि डिजिटल क्रिमिनल एक्टिविटीज से डील करता है, उसके अंतर्गत देखा जाता है।
1: तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि महिलाओं की मर्यादा से संबंधित कोई अगर बात होती है तो बीएनएस का कानून लागू होगा।
0: जी, उस केस में भारतीय न्याय संहिता सन 2000 का आईटी एक्ट लागू होता है।
1: तो स्पंदन जी, क्या विश्व में क्या है?
0: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात तो काफी समय से चल रही थी। यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, काफी समय से लागू है और काफी सख्त भी माना जाता है। वैश्विक स्तर पर देशों के कानून बनाने के लिए उसे आधार बना करके डोमेस्टिक कानून या देश के देशिक कानून बनाए। डेटा प्रोटेक्शन आने वाले भविष्य में बहुत ही जरूरी है। अब हम एक नए युग में जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां पर इस डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। हमारे पास अब नए सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो कि डेटा को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में प्रोसेस कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस डेटा से बहुत कुछ सीखता है। तो डेटा कलेक्ट करना कंपनियों के लिए जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि इससे ये बेहतर सर्विसेज दे पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। सरकार के लिए भी डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, तभी ये बेहतर नियम बना पाते हैं, बेहतर गवर्नेंस सरकार कर सकती है। डेटा कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, पर साथ ही साथ ये इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं इस दुनिया में इस डेटा का दुरुपयोग करके लोगों को नुकसान भी पहुंचाना चाहती हैं। इस अधिनियम का इसी जगह पर दायित्व और बढ़ जाता है। भविष्य में हमें इस अधिनियम को बेहतर बनाना होगा ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: स्पंदन जी, स्टूडियो में आप आए और हमारे श्रोताओं को इतनी इतनी नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें
3: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनु मलिक के बनाई तर्ज के साथ, गीत लिखा है रानी मलिक ने, आवाजें हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म है मेहरबान।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
6: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
7: हेलो,
5: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
6: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
5: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
6: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
5: ओनली ऑन AIR ओबरा।
8: आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को। आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की, फिल्म है दुश्मन।

श्रोताओं, गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां। हाइड्रेट रहें, प्यास न होने पर भी बार बार पानी पिए। ओआरएस और नींबू पानी शरीर में पानी और नमक की कमी पूरा करने के लिए नींबू पानी छाछ या ओआरएस का सेवन करें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर के अंदर ही रहें। यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो अपना सिर और चेहरा सूती कपड़े से ढकें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े ही पहने। मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा और ककड़ी खाएं। बासी खाना खाने से बचें और पशु पक्षियों का रखे ध्यान। अपने घर की छत या बालकनी में पानी और दाना अवश्य रखें। सावधानी ही आपका बचाव है। आकाशवाणी उम्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे इंडीवर के लिखे इस गीत को, आवाज़ें थी आशा भोसले की और फिल्म थी आंख। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरे सब समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी उबरत से बोल रहे हैं। समय हो गया है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में कत्ल शिफाई का कलाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे गवाही फिल्म का ये गीत।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की, फिल्म थी हम आपके हैं कौन। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी उबरे से बोल रहे हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां, प्यास होने पर भी पानी बार बार पिए, ओआरएस या नींबू पानी का घोल बार बार बनाकर पिए, धूप से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर के अंदर ही रहें, यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो अपना सिर और चेहरा सूती कपड़े से ढके रहें, हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने, आहार में आप मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा और ककड़ी खाएं, बासी खाना खाने से बचें और पशु पक्षियों का रखें ध्यान, अपने घर की छत या बालकनी में पानी और दाना अवश्य रखें, याद रखिए सावधानी ही आपका बचाव है। और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं बाबू मान का गाया लिखा और संगीतबद्ध किया गीत फिल्म हवाएं से।

0: बाबू मान के गाये से गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो गया है कार्यक्रम सुगम संगीत का और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद गैर फिल्मी गजलें। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम की आवाज के साथ।
1: ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

0: फाल्गुनी पाठक की गाई इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
4: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं।

0: उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2-3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
1: हैं? द मिनिस्टर सेड द स्कीम विल वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू 81.35 करोड़ पर्संस कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर दैट फूड ग्रेन्स रीच एवरी नीडी पर्सन इन द कंट्री ऑन टाइम थ्रू PDS। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेड The CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat wave sweeping several parts of the country

0: came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की झरोखों से सफर 90 वर्ष का। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यादों की झरोखों से सफर 90 वर्ष का। आकाशवाणी को हो चुके हैं पूरे 90 साल और हमारे और आपके रिश्ते को भी इतने ही साल हो गए हैं, जिसमें हमने पूरे विश्वास से अपना रिश्ता निभाया। आप तक मनोरंजन, देश विदेश की घटनाएं और मनोरंजन जानकारियां भी आप तक पहुंचाई हैं। और उम्मीद है कि आगे भी हमारा ये रिश्ता और मजबूत होगा। चलिए इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को। आवाज थी किशोर कुमार की और फिल्म थी अनुरोध।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
5: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
5: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
5: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: एक बार फिर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यादों के झरोखों से सफर 90 वर्षों का। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्र और विश्व में अपनी आवाज के प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए। अगर इसके इतिहास पर थोड़ी नजर हम डालते हैं तो 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1957 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आकाशवाणी शब्द का अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म बैराग से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा का प्रसारण कार्यक्रम है यादों की झरोखों से सफर 90 वर्षों का। हीट वेव से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाइड्रेट रहें, बार बार पानी पिए भले ही प्यास न लगी हो, ORS नींबू पानी या छाछ का सेवन करें, कपड़े हल्के रंग के ढीले और सूती पहने, सिर ढके घर से बाहर निकलते समय टोपी छाता का उपयोग जरूर करें, सिर को गीले तौलिए से ढकें, हल्का खाना खाएं और बासी भोजन खाने से बचें, और पशु पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर या बाहर आंगन में आप पानी का बर्तन जरूर रखें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्षों का।

बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अपने आदर्श वाक्य पर चलते हुए आकाशवाणी आज सैकड़ों रेडियो स्टेशन के जरिए भारत की 92% से अधिक आबादी तक अपनी पहुंच बना चुका है। संगीत, शास्त्रीय गायन और रेडियो नाटकों के जरिए भारतीय कला को संरक्षित और प्रसारित करने में इसका अहम योगदान रहा है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के माध्यम से देश के कोने कोने तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने का ये

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स

0: ने चारों टास्क फोर्सेस के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था, और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन, और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है, और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है, अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है, और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे, और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकुत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो

0: तरीके के अलग अलग थे। एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद, खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए सीएए जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी
0: विदेशी
1: बिल्कुल
0: मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़े कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख कर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
0: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
0: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिकोर, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने

0: ये साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं और समय है कार्यक्रम रसधारा का।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समय फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है वैशाली सामंत की, गीत लिखा है बस तैयरे वाला ने और संगीत दिया है संदीप चौटा ने।

अभी आप सुन रहे थे वैशाली सामंत की आवाज में समय फिल्म का गीत। गीत लिखा था बाज तैयारी वाला ने और संगीत दिया था संदीप चौटा ने।

0: अभी आप सुन रहे थे रकीब फिल्म का गाना केके की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने, संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
0: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा और अगला गीत आइए सुनते ही चॉकलेट फिल्म से। केके की आवाज में गीत लिखा है प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

0: जनकल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण कार्यक्रम है रसधारा। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म राज से। इस गीत को गाया है विजय बैंडक्विट ने और जॉली मुखर्जी ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: भीषण लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीट वेव से बचाव और सावधानियां इस प्रकार आप कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर के अंदर रहें और सीधी धूप से निकलने से बचें। हाइड्रेट रहें, यानी प्यास न होने पर भी बार बार पानी पिएं। ORS, नींबू पानी और छाछ का नियमित सेवन करें। हल्के ढीले और सूती कपड़े पहनें। घर से बाहर निकलते समय सिर को तौलिए, टोपी या छाते से ढक कर रखें। बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों को अत्यधिक गर्मी से बचाएं। यदि चक्कर आना, तेज बुखार या उल्टी जैसा महसूस हो तो तुरंत छायादार जगह पर जाएं और पत्र सूचना कार्यालय की एडवाइजरी के अनुसार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा।

0: कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे अनु मलिक के संगीत निर्देशन में सईद कादरी के लिखे इस गीत को। आवाज थी अलीशा चिनॉय की और फिल्म थी कलयुग।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: रसधारा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं परंपरा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज बनाई है शिव हरि ने।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण कार्यक्रम है आपकी बात। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म आदमी खिलौना है से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात। अब आइए सुनते हैं ये दिल लगी फिल्म का गीत उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत निर्देशन है दिलीप सेन और समीर सेन का।

अभी आप सुन रहे थे सपनी साजन की फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में। गीत लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अब आइए सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नवाब आरजू के लिखे इस गीत को। आवाजें कुमार सानू और साधना सरगम की, फिल्म है गैम्बलर।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने

0: की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।